0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराइत ज़वाबित लागू है।
7: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
12: 11.9% 11.9%
13: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत ज़वाबित लागू है।
13: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराइत ज़वाबित लागू है।
9: 100 FM।
12: 11.99% 11.99%
13: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
13: 11.99%।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL, फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
9: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
7: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
16: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: बेटा आंखें खोलो, मुंह छोड़ो, बिस्तर धोलो।
1: क्या हुआ मेरा हाल?
0: मिस ने मुझे एक नज़म याद करने को बोली है। उठो बेटा आंखें खोलो।

0: आंखें खोलो, आप क्या मुझे याद करवा सकते हैं?
1: याद तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे खुद याद करनी पड़ेगी क्या लिखा है। उठो बेटा, आंखें खोलो, सर चढ़ो मुझे। याद हो गई, तैयार हो?

0: रंग सारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे।
1: नहीं नहीं मिराल, इस तरह नहीं, गा के सुनाओ मिराल, गा के।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
7: शराइत ज़वाबित लागू है.
8: 100 FM.
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है.
12: शराइत और ज़वाबित लागू है.
8: 11.99% 100 FM.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त

0: चेक पर मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ,
3: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीतता जा,
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365. Good morning Pakistan with RJ Samiha. Health update is brought to you by FM 100 Pakistan.

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और हेल्थ अपडेट का टाइम हो गया है और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि कहां मैं गई थी, और मैं कुछ ज्यादा दूर नहीं गई थी, नवाबशाह गई थी। और आई हैव टू ट्रैवल समटाइम्स बिकॉज आई हैव टू होस्ट इवेंट्स देयर। तो नवाबशाह में गई थी और इट्स ऑलवेज नाइस। आपको लगेगा नवाबशाह कोई खास जगह नहीं, आई एम टेलिंग यू इट इज ऑलवेज नाइस टू यू नो गो आउट ऑफ कराची। कराची ज्यादा मुझे हर जगह अच्छी लगती है, नवाबशाह भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहां के लोगों के पास मेरे टाइम होता है। ऑफकोर्स आपको वो बहुत ज्यादा टेंशन और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देते हैं कराची के अंदर। मुझे लगता है शाहरुख खान भी आ जाएगा तो उसको बोलेंगे यार शाहरुख अच्छा, उसको बोलो मुझे मेरे साथ आकर तस्वीर खिंचवा रहे, मैं नहीं जा रहा उसके पास तस्वीर खिंचवाने। मगर नवाबशाह के अंदर यू नो रेडियो लोग भी, रेडियो वाले लोग भी स्टार होते हैं, उनके अपने लोग भी बड़े प्यारे हैं। और हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फलों की के मतलब फल जो है कराची के अंदर बहुत ही, जब वो बेचारे रिजेक्टेड ऐसा लगता है कि जो बेचारे वो फार्मर भी बोलता होगा यार ये कौन से फल हैं ये दे दो ऐसी, तो वो वाले फल हमें मिल रहे होते हैं। खासतौर पे केले की अगर आप सीहा सखर में या नवाबशाह में आप इमेजिन करें और यहाँ के आप जरा केले देखें तो ऐसा लगता है कि कराची का ही असर हो गया उसके ऊपर, केलों पे। खैर केले खाना, केलों को हम बहुत ही बेचारों को ज्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि केले आपको बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, लेकिन केलों के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जो है वो फायदे रखे हैं। तो हेल्थ बेनिफिट ऑफ बनाना मैं आपको बता दूं कि मीडियम बनाना में नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो आपको फास्ट और फैट फ्री फ्यूल देता है। इसके अंदर हाई पोटेशियम है और हाई पोटेशियम लेवल जो है वो आपको ब्लड प्रेशर को मैनेज करने मदद करते हैं, आपके दिल का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके लिए भी आपकी मदद होती है, डाइजेशन आपकी मूव इम्प्रूव होती है, बच्चे आराम से आप जो उनका फर्स्ट सॉलिड फूड में बनाना होता है वो आराम से बच्चों को बनाना आप खिला सकते हैं छोटे बच्चों को भी। और इसके अलावा जो है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एनजीक की तरह बहुत ज्यादा तो फिर क्विक आपको जब कुछ खाना हो एनर्जी अपनी कि बिल्कुल ही आप जो है ना एनर्जी लेवल गिर रही है आपकी तो आप बनाना खा के अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं, जो जिम गोइंग है फटाफट बनाना खा सकते हैं ठीक है। और लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें है ये नहीं कि आप जो है ना वो इसके अंदर क्या कहते हैं बहुत कैलोरीज होती हैं, लेकिन ऑफकोर्स इट इज हेल्दियर। फलों के अंदर जो कैलोरीज हैं वो आम आर्टिफिशियल कैलोरीज जो कुकीज में या और किसी भी चीज में, उससे हमेशा बेटर ऑप्शन फल है, वो जल्दी बर्न भी हो जाती है राइट। और इसके अलावा सुबह के वक्त आप आराम से खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट फूड है बनाना, इसे मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ ना खा सके बच्चे वैसे बनाना तो खा ही लेते हैं, बनाना एंड एप्पल्स खा ही लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं तो जरूर बनाना दिए और खाएं, और दो कम से कम दो बनाना तो जरूर खाएं। इसके अलावा आफ्टरनून स्नैक के तौर पर भी क्रेविंग्स जो है ना वो केला फौरन रोक देता है, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा, आप एक दो बनानास खा लें और आपको लगेगा कि एनर्जी आ गई। और अगर आपने उसके साथ खजूर भी खा लिया तो बोलेगा बस आई एम डन, मतलब लिटरली इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, बनानास एंड डेट्स वेरी गुड। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं आई लव डेट्स राइट ओके। इसके अलावा आपके हेल्थ गोल्स के अंदर ये आ जाता है एंड इस वेट लॉस मसल गेन एनर्जी के अंदर बनाना जो है वो काफी ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सुबह के वक्त बेहतर एक फ्रूट खाना बजाय इसके कि आप रात के वक्त फ्रूट खा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आफ्टरनून तक आपका फ्रूट खाएं, उसके बाद जो है ना आई डोंट थिंक फ्रूट, कुछ हर खाने का एक टाइम होता है, हमारे यहाँ तो है कि बस खाना आ जाए आपके सामने, टाइम नहीं देखते हम, टाइम नहीं देखते, कुछ लोग तो भूख भी नहीं देखते, बस खाना आ जाए और खा लो। लेकिन बेहतर है कि ये सुबह का मिड आफ्टरनून ब्रेकफास्ट और सुबह के वक्त केले खाने की जो है वो बड़ी अहमियत है, तो ये मैंने आपको केले को हमेशा क्या कहते हैं अहमियत दे दी है। एंड सैयद उमेर का मैसेज आ गया, हेलो हाउ आर यू सैयद उमेर, हाउ इज फातिमा डूइंग, कहने आई हैड बीन स्किपिंग माई लंच सिंस 12 ईयर्स, ओ माई गॉड, कहते मैं 12 साल से लंच ही नहीं कर रहे, ओ हो, यूज टू हैव डेली फ्रूट्स एंड लंच, बनाना इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ माई प्लेट। बिल्कुल सही बात है, बनाना एक हमारा मासूम फल है और लोग लिटरली केले लेते हुए भी लोगों से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, खुदा के लिए आई नो के फल वाले बहुत ओवर प्राइस भी होते हैं लेकिन यार कभी मॉल्स वालों से तो आप नेगोशिएट नहीं कर रहे होते, खासतौर पे कॉफी वालों से तो आप बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते, ओवर प्राइस कॉफी जिसका सेहत को कोई फायदा नहीं है, इवन वो कोल्ड कॉफी हो या कोई भी कॉफी हो उस पर तो कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा होता कि यार कब 600 की कॉफी दे दी जो ठंडी हो गई आते आते हैं, लेकिन केले से केले वाले से और फलों वालों से लोग जरूर नेगोशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ फल
اور وہ چیپ بھی ہوتے ہیں پھل کھانا. آپ سوچیں 600 میں آپ کتنے سارے پھل کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, لیکن 600 میں آپ صرف کیا پئیں گے, ایک کافی. اوپر سے آس پاس ایسے لوگ برگرز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کافی پی رہے ہیں یا کیا پی رہے ہیں. اور لیکن خیر اس کا ایک انوائرمنٹ یا ایمبیانس ہے, لیکن ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھے پھل ہیں. جو چیز نیچر کے قریب ہے, قدرت نے بنائی ہے, اللہ نے بنائی ہے, وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ظاہر ہے بیٹر ہے اور ہیلتھ کے لیے. میں خاص سے کیلوں پہ ہم نے بڑی باتیں کر لی, کیا کہتے ہیں ہم کوئی گانا سن لیں. اور ٹاپک تو میں نے بتایا ہی نہیں آج کا کیا ہے. ٹاپک آج کا ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے, این زی کا آپ ذرا غور سے سنیں, ٹھیک ہے. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کون سی ایسی سچویشنز ہیں جن سے آپ ہمیشہ بھاگنا چاہتے ہیں, لٹرلی کہ آپ کہتے ہیں یار یہ بس میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں. اور ایسی بہت سچویشن ہے, لوگ کنفرنٹیشن سے بہت بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کسی سے سوال نہ پوچھنا پڑے. لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں رزلٹ دیکھنے سے بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میں بہت بھاگی ہوں رزلٹ سے. لوگ ویٹ مشین کے اوپر کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی سب کے سامنے, جیسے ویٹ نہیں ہو گیا اگر زیادہ تو کوئی قیامت آ جائے گی اور لوگ جج کریں گے. لوگ جج کرتے ہیں, لیکن خیر تو کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن سے کہ ہم بھاگتے ہیں. اور لٹرلی کچھ رشتہ داروں سے ملنے سے ہم کہتے ہیں ملک چھوڑ, میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک پلانٹ میں بھی کیوں ہیں, مطلب ان کو مارس پہ ہونا چاہیے یا مجھے مارس پہ ہونا چاہیے, ہم ایک ساتھ ایک پلانٹ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہم رشتہ داروں کو. کچھ ایسے بھی رشتہ دار ہیں انسان کے لوگ ہیں, تو ان سے فیس کرنے سے آپ بہت بھاگتے ہیں. یو وڈ گو ٹو اینی لینتھ ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن. تو دس از اے ٹاپک, اینڈ سینڈ اس یور میسجز. آپ ہمیں میسج کریں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, یہ جاننے کا تو ایسی کون سی سچویشنز ہیں جن سے آپ بس بھاگنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے بچا لو. اینڈ ابھی میں اپنا فیوریٹ گانا پلے کر رہی ہوں. فرائیڈے کا میرا شو ان لوگوں نے بند کر دیا, اور کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو, لیکن فرائیڈے کے دن میں یہ گانا ضرور لگاتی تھی, اینڈ آئی لو دس سانگ. چلو کوئی نہیں, تھرسڈے کو بھی لگا دیتے ہیں. لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: राइट जी, आप सुन रहे थे फ्राइडे आई एम इन लव. वो बेचारा कहता मंडे से स्टार्ट हुआ और जुम्मे तक मुझे प्यार भी हो गया. हर प्यार तक नजर में भी हो जाता है, जो सच्ची बात है. खैर, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और मेरा आज का तारीफ ये है कि क्या कहते हैं कि आप किस सिचुएशन से भागते हैं. और एनजीक ने बहुत मजे का जवाब दिया, कहते हैं जब कोई तारीफ करे. मैं तो यकीन करें कोई मेरी तारीफ करता है ना, मैं तो बुलाती हूँ दोबारा. जैसे मैं इवेंट होस्ट कर रही हूँ और किसी ने मेरी तारीफ की कि आपने क्या इवेंट होस्ट किया, मैं रुके रुके तो वहां पर जो सुपरवाइजर होते हैं उनको बुलाते हैं, देखे देखे मेरी तारीफ करें, मेरी तारीफ करें. तो मैं तो कहते बोलो मुकर्र. एक ये है कि भाग रहे हैं, बड़े शर्मीले टाइप लग रहे हैं वो. सिनेरियो टू के एट द टाइम ऑफ बिल पेमेंट. हाँ, बिल पेमेंट से भागो या ना भागो, वो पीछे पीछे आ रहा था, खास सुबह के इलेक्ट्रिक का बिल. हैरत करे अल्लाह ताला उन लोगों को. तो खैर, सिनेरियो थ्री, इफ अ लेडी ऑफर मी टू हैव अ कप ऑफ टी. कह रही अगर लड़की कहे आपसे कि आप मेरे साथ चाय पिए. लोग तो बड़े खुश होते हैं यार कि कोई लड़की बोल रही है चाय पीने को, मना नहीं करना चाहिए, वैसे बुरी बात है, सच्ची बात है. खैर, आप लोग भी मुझे मैसेज करें और बताएं दोस्तों कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनसे आप भागना चाहते हैं, हमेशा भागना चाहते हैं, अखबार पढ़ने से भागना चाहते हैं. न जाने क्या पढ़ना, लिटरली आई हैव न्यूज़पेपर्स कमिंग टू मी एवरी डे, दैट्स माय थिंग. लेकिन यकीन करें अखबार उठाते हुए ना, खास तौर पर जब मेट्रो का पेज होता है ना, जरा नहीं देखने का दिल चाहता कि कोई अब पता नहीं क्या सुबह सुबह क्या देखने को मिल जाएगा. ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन से तो खैर मैं बहुत भागती हूँ, मैं भागती हूँ. मैं एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहना चाहती हूँ. मेरी अम्मी अक्सर कहती बेटा कभी तो बाहर आ जाओ अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से. खैर, हम तो फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमें बताएं, और अगर हैं भी तो भी बता सकते हैं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पेज पे. तीसरा तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. और आपने हमें ये बताना है कि आप किस सिचुएशन से भागते हैं. वैसे अगर आपका एक्स सामने आ जाए, एक्स बॉस या एक्स पार्टनर, वो भी काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है ना. चलिए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
3: सर, सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
5: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
6: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
5: HBL जरई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
8: शरायत जवाबित लागू है.
9: 100 FM
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
11: शौकत खानम कराची की तकनीर.
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
13: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
8: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
9: 11.9% 11.9%
14: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
15: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ,
3: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा,
11: एंड
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
18: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं। मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक मैसेज और वो मैसेज है एचपीएल फ्रीडम अकाउंट की जानिब से। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बैंकिंग होनी चाहिए आसान। एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाए मजीद सहल और तेज। हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी। आज ही एचपीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदा उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियात का। तो ये तो मैसेज था एचपीएल फ्रीडम अकाउंट की जानिब से। अब चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। और इकबाल हुसैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह अपनी। हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और यार मुझे याद है मेरी बर्थडे पे आप आए थे और आपने मेरे लिए इतना अच्छा केक भी लाए थे आप, तो मैं आपको केक आपके लिए गाना डेडिकेट कर दूंगी। सारे गाने आज इकबाल हुसैन साहब के लिए क्योंकि उनकी है हैप्पी बर्थडे और 10 सितंबर का दिन है। मुझे बहुत लोगों को विश करना है लेकिन सबसे पहले इकबाल हुसैन आपकी बर्थडे एनीवेज। और लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। अदनान अहमद एंड नजीर खोसो का मैसेज आया है, इकबाल हुसैन साहब ने मुझे तस्वीर भेजी कश्मीर की शायद। और नजीर को अबिद अमीर कह रहे हैं मौजू पर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। तो पहले आप सच नहीं कहते थे, झूठे दगाबाज है आप। अबिद अमीर कह रहे हैं मौजू पर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जहां पर नफरत तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती हो ऐसे हालात से जगह से भागने का दिल करता है और भाग भी जाता हूं। इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, जो जहर लोग आ जाते हैं, मैं यकीन करूँ जहर लोग अगर मेरा रडार ऑन हो मैं तो उसे बहुत ही ज्यादा दूर भागती हूँ। कुछ लोगों की वाइब भी इतनी अजीब हो जाती है ना, वाइब होती है उनकी, देखते ही ना उनको बस गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। खैर, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या कहते हैं, अदनान अहमद का भी मैसेज आया, कह रहे मैं उन हालात से भागता हूं जहां सच बोलना पड़े और सामने वाला सुनने के लिए तैयार ना हो, फजूल की बहस, मनफी लोगों की सोहबत और जहां इज्जत ना हो वहां से मैं भाग जाता हूं। वादे पूरे ना करने वाले हालात से भागता हूं क्योंकि दिल नहीं दुखाना चाहता। जहां सुकून ना हो वहां मेरा दिल नहीं लगता, कराची में मतलब इसलिए मैं वहां से फरार जाता हूं। मैं हालात से हमेशा भाग जाता हूं जहां रिश्तेदार बैठकर पूछे बेटा नौकरी कब लगेगी, शादी कब करोगे। ये तो वाकई मेरे और रिश्तेदारों के पास ना कोई और काम नहीं होता, खासतौर पर जो खवातीन रिश्तेदार होती हैं, क्योंकि बिजनेस की बातें तो आप उनसे कर नहीं सकते और कि बिजनेस कैसा चल रहा है या इकोनॉमी या जो भी। तो उसके बाद फिर आप उनसे वो क्या बात है कि बेटा तुम कब शादी कर रहे हो, कब जैसे हमें कब वो मिठाई खिलाओगे, जैसे इनको बड़ी खुशी है मिठाई की, कुछ भी नहीं है इन लोगों को, बस ऐसी टाइम पास कुछ ना कुछ तो बातें करनी है। अच्छा कैसी तुम्हारी नौकरी कैसे जा रही है, कितने पैसे कमा लेते हो, लिटरली सबके सामने कुछ अंकल हैं वो सबके सामने पूछते हैं अच्छा तुम कितने पैसे कमा रहे हो। मेरे दोस्त कभी भी नहीं आते फिर उनके सामने कहते हैं तो ये बड़े खतरनाक सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं सबके सामने। ऐसे लोगों अकेले रह जाते हैं ऐसे लोग, ऑनेस्टली जो ऐसे खतरनाक सवाल पूछते हैं। प्लीज आपके अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो बच्चों से ऐसे सवाल पूछें, मजेदार बातें पूछें उनसे कि वो उनका जवाब देते हुए खुश हो। जो अंकल्स हमेशा बेटा बताओ मार्क्स कितने आए तुम्हारे इस बार इंटर में, वो बस भाग जाते हैं ऐसे लोगों से। जो आपके रिजल्ट पूछें और मैरिटल स्टेटस पूछें, ऐसे भी लोग होते हैं। सबसे ज्यादा बकवास मुझे वो चीज होती है बॉस कमरे में बुलाए, इधर आए मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तो जहर लगता है लिटरली। स्कूल कॉलेज में टीचर्स आप रुकें क्लास के बाद आपसे बात होगी, मैंने कहा क्या बात होगी ये भाई, मतलब लिटरली दैट इज अ वेरी खतरनाक सिचुएशन। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा, टीचर रोक ले कि नहीं यार ये तुम लोग रुक जाओ तुम लोगों से बातें बात होगी। हाँ सर अकेले अकेले तो बहुत ही टेंशन है सर, बॉस आपको जब अलग से कमरे में बुलाए, वैसे तो मरे होते हैं कि बॉस को जाके ऐसे सुनाए, लेकिन जब बॉस खुद बुला लेता है ना कमरे में अच्छा इधर आए, जब एचआर से कॉल आ जाती है। अच्छा एचआर वाले भी कोई इंतहाई जहरी लोग होते हैं यकीन करो, जब आप 10 दफा टाइम पर आओ ना वो आपको कभी तारीफ नहीं करते, वेरी गुड गोल्ड स्टार, कभी नहीं वो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। भले आप महीना भर टाइम पे आओ, एक दो दफा लेट हो गए तो वहां से कॉल आ गई, लग के चमाटा लगाने का तो चाहता है मेरे ऐसे एचआर वालों को। मैं कहता हूँ ऐसे का काम क्यों करते हैं ऐसे डिपार्टमेंट में, जहां लोग आपको हर वक्त गालियां दें। लिटरली आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहीं ना कहीं कम से कम अगर दुआएं नहीं दे रहे ना तो गालियां तो बिल्कुल ना दें, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं ना दिन रात उन लोगों, हालांकि मुझे आई हैव स्टडीड एचआर और मैं सोचती बड़ी कूल जॉब हो गई, लिटरली एचआर इज सो नॉट कूल, क्योंकि लोग उनको बड़ा कोसते हैं क्योंकि ये ना स्पाई आपके दुश्मन है, मीठी छुरी होते हैं ये लोग, आपसे ऐसे बात करेंगे से आपके दोस्त हैं, यकीन करें आप लोग बिल्कुल दोस्त नहीं होते। और बिल्कुल हर चीज सिस्टम बनाया हुआ है जी, हमें तो नहीं पता सिस्टम के मुताबिक आप लेट आ रहे, दफा करिए सिस्टम, कराची में रहते हैं यार कुछ सिस्टम विस्टम का कुछ नहीं पता होता, रास्ते कभी भी बंद हो जाते हैं, सुबह बंदा जा रहा है सो पता नहीं कि वापसी में कब पहुंचेगा। और कराची की बात करूं मुझे समझ में नहीं आता कि जो इम्तियाज का सामने चुरंगी है ठीक है वो इतनी बदसूरत क्यों है, खुदा के लिए इतनी गंदी वाइब्स है ना उस जगह की, एक तो इतनी बड़ी वो राउंड अबाउट बना दी है ठीक है,
اینڈ اٹ از اگلی. آئی ہوپ یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. قیوم آباد کے ساتھ وہ قیوم آباد سے آتی ہیں اور پیچھے بڑا سے راؤنڈ اباؤٹ ہے, سامنے امتیاز ہے, دین یو گو اوور ٹو بلوچ پول. اٹ از سو اگلی دیٹ پلیس. وہ اتنی بڑی جگہ ہے, وہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے, وہاں پودے پھول لگ سکتے ہیں. اٹ از سو ڈیم اگلی. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ چلی جائے گی اس کو دیکھ کے. اور میں صبح آ رہی ہوتی ہوں تو صبح نہیں اچھی لگ رہی, میں تو کہتی ہوں رات میں تو اور وہاں رش ہو رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے اس کو کوئی خوبصورت بنا دے. ہیں ادھر ساتھ ہی ڈیفینس ہے, کچھ تو بندہ کی آنکھیں ہوں, کوئی ڈیفینس تو لگے گا ہی نہیں آپ کو وہ ایریا. اور آخر ڈیفینس کون سا اتنا خوبصورت رہا ہے. اب تو وہ نیا بن رہا ہے نا, ڈی ایچ ایس سٹی, ایوری تھنگ از اباؤٹ ڈی ایچ ایس سٹی نا. بٹ اٹ از ویری نائس, ڈی ایچ ایس سٹی بہت خوبصورت بن رہا ہے. یقین کریں واپسی میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی پارٹی چل رہی ہے وہاں, اتنی تو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, حسین جگہ لگ رہی ہے مجھے. خیر اور اس پر میں ایکسپیرینس اچھا ٹھیک ہے. اور زہر والوں کا تو ہم علاج کر لیتے ہیں, بٹ نیگیٹو پیپل آلویز اسکیئرڈ می. سب لوگ نیگیٹو لوگ سے ڈرتے ہیں, میں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ کراچی اسپیشلی, پاکستان پورا ہی لیکن کراچی اسپیشلی از فل آف نیگیٹیوٹی, یو نو سو مچ نیگیٹیوٹی دیٹ مجھے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سنبھالنا پڑتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے اتنی نیگیٹو باتیں نہ کرو. بریک سے پہلے تھوڑا سا گانا لگ سن لیتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
5: 100 FM.
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
7: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है। HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
10: शराइत ज़वाबत लागू है।
5: 100 FM
11: 11.9% 11.9%
12: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
13: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शराइत और ज़वाबित लागू है।
11: 11.99%

0: फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ,
3: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा,
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ हद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
6: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: facebook.com/fm247365
8: fm247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
2: 100 FM।
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और शियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
7: शराइत ज़वाबित लागू है।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
11: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
12: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%।
13: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
15: शौकत खानम कराची की तकदीर।
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: 11.99% 11.99%
10: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
11: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
12: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%
17: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
18: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111-118-2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL
15: एंड
9: शौकत खानम कराची की तकदीर
16: एंड
19: सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
16: एंड
20: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: FM 100
2: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
21: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हम भी आपके साथ साथ हैं। आप लोगों के बड़े प्यारे पैगामात और एनजीक के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। थैंक यू एनजीक, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे पास अबिद मीर के भी मैसेजेस आ रहे हैं और बर्थडे विशेस भी चल रही हैं इकबाल हुसैन के लिए, सब उनको विश कर रहे हैं और केक की भी फरमाइशें कर रहे हैं। और आबिद मीर कह रहे हैं, वाह भाई वाह, समिया कहाँ लिखा है कि लड़कियों से नहीं खा सकते। पिछले दोनों एक जबरदस्त प्रेजेंट है उनकी वालदा के साथ, मैंने सैयदा ने 2500 रुपये का खाना खाया। आप थोड़ी हिम्मत करें, पैसे ज्यादा सब ही नहीं चाहता है मैडम। वो बड़ी जो है वो क्या कहते हैं, अच्छी होंगी प्रेजेंटर, और लेकिन हम ये सिर्फ खाने वाली पार्टी है, यकीन करें। अच्छा जी, और इसके अलावा, और आपने क्यों खाया लेडीज से? कितनी बुरी बात है, लेडीज से नहीं खाते, कभी भी नहीं खाते लेडीज से खाना, बड़ी बात है, बुरी बात। आदतें सही बदले, हाँ लड़के हैं उनसे जाएं खाएं, खवातीन से कौन खाना खाते? भले खवातीन कितना भी बोले, आप लोगों ने नहीं खाना। यही मैं आपको बातें बताऊंगी ना, और कौन किसी ने बताना है। इसके अलावा मुबशर हसन हमारे बहुत अच्छे लिसनर है और उनका भी मेरे पास इतना अच्छा सा कोई मैसेज आया हुआ था जो मैं शामिल करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि आई रियली अप्रिशिएट दैट हाउ मच इम्फेसिस यू पुट ऑन पर्सनल हाइजीन, स्पेशली दैट वन शुड ऑलवेज यूज परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, रोल ऑन कलोन्स। आई मस्ट कन्फेस आई वेरी सेल्डम यूज परफ्यूम, बट लिसनिंग टू यू आई मेक श्योर दैट आई मस्ट नॉट ओनली वेयर गुड क्लीन क्लोज एंड शूज बट टू वेयर गुड स्मेल टू। थैंक्स अगेन। तो ये बातें मतलब कि हाइजीन की, और कि आपने अच्छा परफ्यूम लगाना है, अच्छा बॉडी स्प्रे लगाना है, अच्छे खुशबूदार बन के आपने कहीं भी जाना, उससे पहले कोशिश ये अपने आप को जरूर देखें, जज करें। अच्छा, लोग बहुत महंगे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी परफ्यूम्स इतने ज्यादा महंगे नहीं होते, और लड़कों के मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो। सिर्फ नहा लें, कभी कभी नहा लें और साफ कपड़े पहन लें, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची का जो वेदर है उसमें हमेशा, अभी भी आपको इतनी गर्मी अचानक से महसूस होती है, उसमें आपको खुद अंदाजा नहीं है। यू नो यू स्मेलिंग बैड, ऑलवेज स्मेल गुड, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड परफ्यूम, अ गुड रोल ऑन, सो दैट मतलब लोग आपकी इज्जत करेंगे। और दूसरी बात है कि आप अपने आप की इज्जत करेंगे, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, प्यारे लग रहे होते हैं, खूबसूरत साफ सुथरे, तो आपको जिंदगी अच्छी लगती है, अपना आप अच्छा लगता है। और जब आप गंदे सड़े हुए होते हैं, तो फिर इस गंदगी से इंसान का दिल बड़ा भागता है। जब भी तो कराची से भागने का दिल चाह रहा होता है, हर वक्त कचरा, हर वक्त ये वो, तो जहां पे गंदगी होती है, जहां पे नेगेटिविटी होती है, जहां पे बहुत बुराई होती है, जहां पे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, आपको देखा, आपको इतनी वहशत होती है उस जगह से, इट्स डिस्गस्टिंग, कि मतलब आपका दिल नहीं लगता वहां पे। आप कहते हैं यार बस यहां से निकलो, यहां कुछ अजीब सा है, आपको समझ नहीं आता कि क्या है, यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट, आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप कहते हैं यार बस चलो यहां से। किसी कुछ लोगों के पास आपको इतना अच्छा लगता है, और क्या आप चाहते हैं ना कि तुम आप उनके लिए गाना गाते हैं कि आज जाने की जिद ना करो, तो वो जो पहलू में जो लोग बैठे हो वो खुशबूदार हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे इंसान को बनना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग रोक लें कि नहीं यार बंदा ऐसा खूबसूरत सच थच के। और ये खूबसूरत लोगों ने, कुछ लोग खूबसूरत होते हैं मगर साफ नहीं होते, सफाई से दिल लगता है। तो अगर आप एक साफ सुथरे इंसान है महकते हुए, तो फिर लोग आपको बोलेंगे कि यार आप आए, आपके साथ बड़ा दिल लगता है। और अगर आप एक गंदे इंसान है, और गंदे से बाहरी नहीं जाहिरी नहीं बातिनी भी गंदे इंसान है, कंजूस सड़े हुए झूठे मकार, तो फिर आप लोग आपसे दूर ही भागेंगे, भले आप लाख अमीर सही, लाख आपके पास पैसा सही। तो खैर ये हमारी बातें हैं, आपकी क्या बातें हैं हमें बताएं, कैसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनसे आप भागना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा रहते हैं आप, तो हमें आप मैसेज करें, हम जरूर जानना चाहते हैं। और इस टॉपिक के बड़ी मजेदार सिचुएशन लोगों के मैसेजेस आप ही रहे, आप लोग भी करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसको भेज देंगे 3636 पर, या मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, नाम है मेरा आरजे समीहा, याद तो होगा। और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं खास सा गाना जो मैंने निकाला था, मगर वो कुछ वजूहात की वजह से वो गाना ही गायब हो गया। कुछ नहीं यार, चलता रहता है, पाकिस्तान है तो वो मतलब वो चली ही गई चीज, लेकिन आप भी टेंशन ना लें, आखिरकार हम वो गाना ढूंढेंगे आपके लिए, टेंशन की बात ही नहीं है जी। और आज जो है हम सारे गाने सारे जो गाने हैं हम अपने, वो जो है वो उनको ही डेडिकेट कर रहे हैं।
اقبال حسین صاحب کو. اقبال حسین صاحب کو ہم اقبال بانو کی آواز پہ گانا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اقبال اقبال. اور یہ گانا ہے کہ جس میں بہت ہی انوائنگ قسم کا گانا ہے کہ بھائی تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے کتنے انوائنگ ہوتے ہیں. ہاں ہاں تم تو اس سے مل کر آ رہی ہو, اچھا اچھا کہاں گئی تھی. ایسے لوگوں سے نا ہمیشہ میں دور بھاگتی ہوں, ایسی سچویشن سے بھی اللہ بچائے. لیٹس انجوائے دس ٹریک فار ا وائل.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
4: किसने कहा

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL
1: and शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: and सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
3: and फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: Like us on facebook.com/FM247365
5: FM 247365

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे मीहा. और आज हम ये बात करें कैसे हालात से आप भाग जाते हैं और आप लोगों की बड़ी कमाल कमाल मैसेज आ रहे हैं. और लिटरली मैं बड़ी हैरान भी हूँ, बड़ी अच्छी बात भी है. नजीक खोसो कह रहे हैं जब बात गाली और ताने पे आ जाए वहां इज्जत नहीं बचती, बहस का फायदा नहीं. जब कोई जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखा है मुनाफिक और तकबर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. जब सब शोर कर रहे हो कोई सुन ना रहा हो वहां अपना सुकून खराब करना फजूल है. जहां दिल का सुकून खराब हो मैं खामोशी से पीछे हट जाता हूँ. बड़ी अच्छी बात है. इसके अलावा वैसे सीरियसली अगर आप किसी रिश्तेदार ने कोई बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद ली हो ना तो फिर बंदा कहता है यार मतलब उससे ना मिलो, वो बड़ी कोई मारेगा अपनी गाड़ी की और मेरी तो वही पुरानी गाड़ी है तो मैं गाड़ी नहीं ले सका आज तक, मोटरसाइकिल से आगे नहीं बढ़ सका. ऐसे लोगों से ना बंदा कहता है यार दूर भागो ये वो. और फिर अगर किसी बच्चे किसी के अच्छे रिजल्ट आ जाए फिर उसकी पूरी कहानी सुनो, हाँ भाई मेरा बेटा तो भाई अव्वल पोजिशन आई है उसकी तो 87% आए हैं और तुम्हारे बच्चे के कैसे. ऐसे लोगों से इतना गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों से मिलने का कि जी अब बताएंगे रिजल्ट. और पेरेंट टीचर्स मीटिंग, ओ माय गॉड ये होती क्यों है. पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे बैन लग जाना चाहिए, जहर मुझे लगती है पेरेंट टीचर्स मीटिंग. यू नो क्योंकि आप मतलब बचपन में कहती अल्लाह ये ना हो पापा भूल जाए कि कोई आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है. मजाल है कि पापा कभी भूल जाए पेरेंट टीचर्स मीटिंग. उसके बाद वाली सिचुएशन कि आप पापा आएंगे तो क्या होगा और मतलब वो वाली सिचुएशन. और रिजल्ट से लोग ऐसे भागते थे कि पापा कहते तुम लोगों को तो जरा हया शर्म नहीं है. पहले कहते थे हमारी कहते गांव के अंदर ना लोगों ने ना कुएं के ऊपर लोगों को खड़ा किया हुआ होता था कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो यही कुएं से कूद के जान दे देंगे. मैं कहा ऐसा भी क्या हो गया भाई रिजल्ट है. खैर कुएं से कूद के जान देने की सिचुएशन काफी जगह दफा आती है. यकीन करें कुछ लोग वाकई में इतने जहर होते हैं कि उनसे बात करने से बेहतर है बंदा कुएं में छलांग मार ले. इतने जहर कोई दुनिया के अंदर लोग हैं. पेरेंट टीचर्स मीटिंग शुड बी स्टॉप्ड. अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप खुद पेरेंट बन गए यकीन करें वो उतनी ही जहर है. कि मैं कहती हूँ बंदा अपनी बुराइयां सुन सकता है लेकिन अपने बच्चे की बुराइयां सुनने के लिए ना बड़ा दिल जिगर चाहिए. और वो शुरू आते हैं आप अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है, आपका बच्चा ये नहीं करता, आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता. हालांकि खुद टीचर की शक्ल में लगा था उन्होंने बड़ी मुश्किल से ध्यान दिया था. और सेकंड ये कि यार अगर हम सब कुछ हम पेरेंट्स ही करा रहे हो तो तुम लोग क्या करा रहे हो. और ये सिर्फ खानापूरी होती है क्योंकि यार पढ़ाना आपने खुद है. और अच्छा पेरेंट टीचर्स मीटिंग एक असाइन टाइम पे होती है लेकिन अगर उसके बीच में कभी स्कूल सेमेस्टर के बीच में अगर फोन आ जाए कि जी आप ऊपर स्कूल आ जाए और आपके बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है, ऐसी बकवास सिचुएशन होती है ना. और बंदा ऑफिस में काम कर रहा होता है और क्या ये कहता है यार बच्चे के स्कूल से क्यों फोन आ रहा है, बच्चे के स्कूल से क्यों फोन आ रहा है. लिटरली इट इज सो स्कैरी. सो मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल वाले ना अपने काम से काम रखे. अगर बच्चा स्कूल गया है तो उस टाइम तक बच्चा आपकी जिम्मेदारी है. खुदा के लिए हमें ना बुलाए. अगर आपने हमें बार बार फोन करने हैं तो फिर खुद ही मतलब फिर घर में ही रख लो बच्चे को. कम से कम फोन तो नहीं आएंगे, स्कूल से तो जान छूटेगी, तो फीस भी दो और टेंशन भी दो. लिटरली आजकल के स्कूल्स पता नहीं क्या है, हॉरिबल स्कूल्स. बस अंग्रेजी बच्चे को सिखा देंगे, इसके अलावा अंग्रेजी के अलावा बच्चे को मजा ले कुछ आता हो, उर्दू तक तो सिखानी पड़ते बच्चों को है. और हर बात पे कह रहे थे पेरेंट्स सिखाएं, पेरेंट्स भी हमने ही सब कुछ सिखाना है, पेरेंट्स ने इसको सब कुछ सिखाना है तो फिर बच्चे ने आपको क्यों भेज रहे हैं. तो खैर ये आप जो है ये हमारी बातें, आप बताएं आपका क्या सीन है, किस सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा भागना चाहते हैं तो हमें आप बता सकते हैं. हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamia इंस्टाग्राम पे. और अगला जो गाना है वो एक स्पेशल स्पेशल विश है. और वो स्पेशल विश जो है ना वो है एक क्या कहते हैं हमारे खास खास हमारे खासो खास इंसान है जिनको जो है हम ये क्या कहते हैं डेडिकेशन दे रहे हैं. तो खिजर महापारा हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आई होप आप जहां रहें खुश रहें. और मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत खास हैं और आपकी दोस्ती भी जो है हमारे लिए बहुत खास है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने सालों में यू हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल एंड हियर इट इज आई एम विशिंग यू लाइव ऑन FM 100 एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू.

जी आप सुन रहे थे यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, और मैं तो बड़ी पागल ही हो जाती हूँ इस गाने पे, क्योंकि मेरी बड़ी यादें, आई हैव सो मेनी मतलब यू नो यादें विद द सॉन्ग, गोइंग क्रेजी इन द कॉन्सर्ट। और रजत चौहान, राजपूत चौहान, नहीं चौहान राजपूत, आपका मैसेज आया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोग जो हैं कैसे लोगों से आपको जो है ना आप दूर भागते हैं, कैसी सिचुएशंस पे आप लोग दूर भागते हैं, जो जिंदगी भर अवॉइड ही करते रहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस, वो फेस ही नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ फेस करना चाहिए चीजों को, यू नो फेस करना चाहिए, राइट ओके। अच्छा चौहान, राजपूत चौहान हम नाम ले लेते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के मैसेजेस इसलिए मंगाते हैं कि हम उनका नाम लें और उनको पॉपुलर कर दें। अब आप देखें कि आबिद अमीर इतने पॉपुलर, इकबाल हुसैन, नसीम पटेल जी फेमस सेलिब्रिटीज हैं हमारे एनजीक। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं अच्छा वो कैसा है, वो कैसा है, राइट। और हमारा ये सिलसिला जारी और सारी है, फिलहाल मूड बड़ा ऑन है, तो सुनते हैं एक और ये ऐसा गाना, आई लव द सॉन्ग।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
3: 11.99% 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
8: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डाली डाली,
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
13: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
14: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
15: अपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
13: एंड शौकत खानम, कराची की तकदीर।
14: And
9: सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
14: And
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
18: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
19: FM 247365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
4: 100 FM।
5: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
8: शराइत ज़वाबत लागू है।
4: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: 11.99% 11.99%
11: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त

0: 10 मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।

0: 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
6: किसने कहा था पैसे

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: 100 FM.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है.
3: 11.99%.
0: This program is brought to you by
7: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं, شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
12: FM247365

0: सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
3: VR Tele Health पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
1: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: facebook.com/fm247365
6: FM 100 31 saal FM 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
7: Assalamu alaikum Pakistan.

0: करके। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

fun too with the lunchtime special on the big one. FM 100.

Yes, everybody. तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. और फिर बाकायदगी से आगाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है. तो बिल्कुल इसी रवायत की तरह हमारे प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हुआ. और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और वहां पर कॉमेंट कर आप हमें बता सकते हैं. आज हमने आपसे ये पूछा है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है, यानी कि ऐसा क्या स्ट्रीट फूड है जो आपको इतना पसंद है कि वो आपका हमेशा हमेशा फेवरेट तरीन रहता है. तो वो क्या है हमें जरूर बताएं. और इसे बताने के लिए आप हमें 3636 में मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप जाएं और मैसेज कर हमें जरूर बताएं कि भाई आपका जो है वो मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है. बहुत टाइम से बस आपको ये बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि अगर आप बाहर गए हैं तो ये खाना है, या अगर आपका मूड खराब हो तो मूड को अच्छा करने के लिए इस स्ट्रीट फूड का आपकी जिंदगानी में बड़ा अहम किरदार है. तो भाई लुकवर्ल्ड ने हमें ज्वाइन कर लिया है. बिल्कुल भाई इनके मैसेजेस को हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ पहले इनकी रिक्वेस्ट की जाने चलते हैं. भाई उन्होंने कहा ये ट्रैक लगा दें, तो चलिए जी इस ट्रैक के बाद वापस आके इनके मैसेजेस को शामिल करते हैं. जब तक आप सोचें और हमें बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है जो ऑल टाइम फेवरेट है, जल्दी से हमें बताएं. जब तक हम ट्रैक की जाने चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

तो भाई लुकवेल की पसंद के ट्रैक को हमने शामिल कर लिया है और साथ ही साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और आज प्रोग्राम लॉन्च टाइम स्पेशल जो है वो बड़ा चटपटा सा होने वाला है, चटपटा सा, मसालेदार, मजे का, क्योंकि भाई आज का हमारा सवाल ही कुछ इतने मजे का है कि इस पर तो भाई इसी तरह की हमारे पास जो है वो कॉमेंट्स आएंगे, मैसेज आएंगे, क्योंकि भाई आज हमने आपसे ये पूछा है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है, यानी कि आपको इतना ज्यादा पसंद है कि आप इंजॉय करते हैं, हर वक्त उसे खाना पसंद करते हैं। तो भाई हमारे पास मैसेज आया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती हैं मुझे वो छोटे वाले समोसे बहुत मजे के लगते हैं जिनके साथ आलू वाली चटनी मिलती है। ओ यस, दैट इज ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट, इसका मैं जिक्र अक्सर करती भी हूं। और कहती हैं कि आज लंच में शामी कबाब और ऑमलेट है। अच्छा, दैट्स नाइस, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई। नसीर खोसो भी हमें मैसेज करते हैं, ठीक है जी नसीर, आप अपने पसंद का हमें स्ट्रीट फूड भी जरूर बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड जो है वो क्या है। लुकमल हमें 3636 पे मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? प्लीज आप अपना भी बताएं फेवरेट फूड। That's also the very nice question. पता है मुझे इतना पसंद है बाहर का खाना, I like street food so much, which is not good for health. मतलब इतना ज्यादा खाएं तो अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे एक चीज जो मतलब लगता है कि ऑल से भी ऑल टाइम फेवरेट है ना, दैट इज फ्रेंच फ्राइज। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंच फ्राइज, मुझे मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। उस पर वही वाली चटनी डालना, मसाला डाल के खाना, ये एक मेरे बड़े फेवरेट हैं। और शवरमा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास तो काफी वैरायटी है यार, मैं क्या क्या बताऊं क्या क्या ना बताऊं। शवरमा मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज जो है ना वो बाहर का शवरमा है। वो भी चंद आते ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे आपको अच्छा शवरमा मिलता है, तो हमारे घर के पास बहुत लजीज शवरमा मिलता है, सो आई रियली लाइक दैट। और ये मेरे लिए मतलब लगता है कि मेरी ऑल टाइम हैप्पीनेस है कि हम शवरमा खा रहे हैं। और क्या क्या पसंद है, देखो फ्रेंच फ्राइज हो गए, छोटे वाले समोसे हो गए, यार यही चंद आद चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं। किसी एक को चुनना जरा मुश्किल है, लेकिन आप जरूर बताएंगे भाई आप लोगों का फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। आज इसी पर हम कर रहे हैं बात, यानी कि आज होगी प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में सिर्फ खाने पीने की मजेदार सी बातें। तो जल्दी से आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर या फिर 3636 पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार और मजे मजे की बातें होंगी खाने से मुंसलिक। कोई याद भी है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि भाई ये खाना आपका फेवरेट कैसा बना, तो ये भी हम जानेंगे आप ही की जुबानी। लेकिन क्या कहते हैं, अगर एक ट्रैक हो जाए तो मजा ही आ जाए, तो चलिए जी ट्रैक की जाने चलते हैं और आते हैं वापस।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है. चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें. हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें. अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें. होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें. हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे. तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं. याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है. तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: 100 FM.
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है. रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं. इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है. आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है. पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके. आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें. बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है. लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं. बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है. याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता. न व्हाट्सएप खुद मांगता है, न कोई अदारा और न कोई दोस्त. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें. साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें. अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था. व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा. ये कोड दर्ज करें. ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है. अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें. 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर. इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल. अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आप آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 24/7/365

हेलो जी, तो आ गए वापस। और भाई मजे मजे की बातें चल रही हैं। और सवाल हमारा आज का आपसे ये है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है वो आप हमें जरूर बताएं। तो आपका फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है हमें बताएं। हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि जी आई एम गुड, जबरदस्त है जी, मैं भी बिल्कुल गुड हूं। कहते हैं ऑफिस से सुन रहे हैं, दिन भी अच्छा गुजर रहा है और इनके लंच में आलू की कतली है। और कहते हैं आपके लंच में क्या है? मेरे लंच में आज ना काठियावाड़ी छोले भी हैं और कढ़ी भी है। सो टुडे आई हैव अ वैरायटी इन माय लंच, और कढ़ी आज मेरे अपने हाथों की बनी है, तो क्या ही बात है भाई। ऑल राइट जी, उसी के साथ कहते हैं कि कराची के मौसम को क्या कहती हैं आप? बिल्कुल जी, कराची के मौसम के बारे में बड़ी ताजतरीन सूरत हाल है, जिनके कुछ तो हवाले से हमने आपका आगाही फराम की थी, मजीद आपको फिर आज बताएंगे प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। कहते हैं कि आप, अच्छा एक जगह का नाम बताया है, वहां की बिरयानी वो भी मसाले वाली। ओ माय गॉड, वाकई में आपके कहते हैं, क्योंकि बिरयानी मुझे लगता है कि मसाले वाली ना होना तो बिरयानी का तो मजा ही नहीं है, तो मसाले वाली बिरयानी तो बहुत अच्छी लगती है। और कुछ भी है कि बिरयानी बाहर की जरा ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि असल अट्रैक्शन उसकी वो खुशबू है। और इसी के साथ उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की है कि इस ट्रैक को लगा देगा, तो ठीक है जी, जरूर हम इसको शामिल करेंगे। और मजीद लोगों से भी जानते हैं कि भाई उनका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और कमेंट करें और बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जाने, और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: सुनो सुनो, बोलो बोलो। ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, रशीद खान ने हमसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी और बातों का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी है, लेकिन भैया चटपटी बातें चल रही हैं क्योंकि आज हमने आपसे ये जाना है कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, जो कि आपका ऑल टाइम फेवरेट होता है तो हमें जरूर बताएं। वो बिरयानी है, वो निहारी है, भाई ये सारी चीजें भी स्ट्रीट पर मिलती हैं जो कि बड़ी पसंद आती हैं। और बिरयानी कुछ भी कहें, मुझे तो बाहर की बड़ी पसंद आती है, तो उसकी भी क्या ही बात है भाई। तो वो आपको पसंद है, या फिर गोलगप्पे हैं, चाट हैं, समोसे हैं, बन कबाब है, कबाब रोल हैं, अये हाय कबाब रोल भी बड़े मजे के लगते हैं। और कबाब रोल मुझे लगता है कि स्पेशली वो वाले जो एक चिकन चटनी रोल होते हैं ना, वो तो भाई आउट क्लास लगते हैं। तो वो आपको पसंद है, या फिर इसके अलावा भी कोई मुनफरिद स्ट्रीट फूड आप जानते हैं और वो आज हम हमें प्रोग्राम में बताना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बताएं जी। हम आपके साथ 2 बजे तक मौजूद हैं। 3636 पर मैसेज करें या आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। हम करें आपके मैसेज का इंतजार, चलते हैं ब्रेक के जाने बाद हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: It's 1 EM. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yarat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अजान ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अजान ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 96.5.
1: You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas. Aur guftugu ka silsila aap logon ke saath hamara jari hai. Aaj humne aapse ye poocha tha ki aapka favorite street food kya hai, jo ki aapka all time favorite hai, jise dekh kar aap khud par kabu nahi rakh pate aur use khane ke liye daud padte hain. To aisa kya aapka favorite tareen street food hai, hame zarur bataein. और इस पर हमारे लिस्टर्स ने कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों से ये जानना बाकी है. तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और बताएं कि आपका मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है. तो इसके लिए आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने हमें 3636 पर मैसेज करना है और हमें बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है. अनटिल एंड अनलेस हम चलते हैं प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत की जानिब, जो कि होती है एक अदद ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम. तो चलें जी, सबसे पहले आपके नाम करते हैं ट्रैक और फिर बढ़ाते हैं अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे.

Yes everybody, so I am back again. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है भाई. आपका मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है हमें जरूर बताएं. एफ एम 100 आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर या फिर 3636 पर. बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. इसी के साथ साथ हमारे पास एक मैसेज आया है. कहते हैं आप भी जब स्ट्रीट पर जाओ तो हर फूड ही बहुत अट्रैक्ट करता है और दिल चाहता है सब खा लो. हाँ ये तो होता है वैसे, लेकिन आपको पता है मजे की बात क्या है कि एक जैसी चीजें आपको हर तरफ हर जानेब मिल तो रही होती है, लेकिन जायका ना आपको हर जानेब हर तरफ एक जैसा नहीं मिलता. यानी कि ये है कि एक जैसी चीज तो आपको मिलती है लेकिन टेस्ट ना आपको हर जगह नहीं मिलता. तो ये भी एक बात होती है, इसलिए आप अपने स्पेसिफिकली स्पॉट पे जाते हैं. यानी कि जैसे भाई जौहर की ये चीज, गुलशन इकबाल की ये चीज, लालू खेत की वो चीज, मतलब इस तरह भी ना चीजें बड़ी मशहूर और पॉपुलर हैं. जैसे कि मैं कहती हूँ कि बिरयानी इज वेरी कॉमन नाउअडेज, के वो आपको कराची में बासानी हर जानब से मिल जाती है लेकिन टेस्ट आपको हर जानब नहीं मिलता मजेदार वाली बिरयानी का. तो आप अपनी पसंद की जगह भी बता सकते हैं जहां से आप बिरयानी खाते हैं या कोई भी जो भी आपका फेवरेट फूड है वो आप खाते हैं. रशीद खान ने तो हमें अपनी जगह बताई है कि उन्हें कहां की बिरयानी बहुत पसंद है. बाकी आप लोग भी हमें जरूर बताएं कि आपका फेवरेट फूड आपको किस जगह का पसंद है. अच्छा भाई, आज जो है वो एक दिन ये भी मनाया जा रहा है जिसका नाम है आर यू ओके डे, यानी कि आप ठीक तो हैं. अक्सर औकात हमें बड़ी जरूरत होती है कि कोई हमसे ये जाने कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, या फिर आप बड़े दुखी दिल होते हैं और चाहते हैं कि आप अपना किसी को हाल बताएं लेकिन कोई आपका हाल जानने वाला नहीं होता. तो क्या आप ठीक हैं या नहीं, आप हमें जरूर बताएं. सो आर यू ओके और नॉट, आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. साथ ही साथ वक्त भी बड़ा तेजी से गुजर रहा है. स्ट्रीट फूड आपका क्या फेवरेट है, इस पे बात चल रही है. एक नया ओएसटी भी आया है जिसे हम शामिल करते हैं और आते हैं वापस इसके बाद.

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Thursday, 10th of September, 2026. You are listening to our show. और आप लोगों को बताते हैं चले कि ये रिक्वेस्ट शो है. आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप के चाहे देन लीव स्पेस आपका मैसेज एंड आपका नाम देन आपकी रिक्वेस्ट और 3634 पर भेजना है और facebook.com/orj.jasmin वहां पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. हमारे साथ रहेगा.

Alrighty, everyone. Welcome back. Absolute FM 100, and the show is called Genie in Our Radio. Okay, Noor ne message kiya hai. रिक्वेस्ट किया है जन्नत से आगे का ओएसटी प्ले कर दीजिए. ठीक हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. जरीन नूर ने मैसेज किया है. सलाम वालेकुम. अस्सलाम है. ठीक हूँ. आप बताइए आप कैसी हैं जरीन नूर. और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है द सॉन्ग जब तू याद आए. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. विल डेफिनेटली प्ले योर सॉन्ग. ओके. आमना हैज टेक्स्टेड इन. वालेकुम अस्सलाम आमना. बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए आप कैसी हैं.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takmeer.
2: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया। अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365.
1: Genie in radio.

Okay, so now welcome back. Absolute FM 100, and it's 23 minutes past you on the dial right now. So, आप लोग पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें. Which is facebook.com/orchid.jasmine. ओके हमारे पास निगत का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम निगत, बिल्कुल ठीक ठाक. इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है आई आई ओके, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके थोड़ी सी देर में जो है हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे विच वुड बी गेस द सॉन्ग. सो वो मैं प्ले करूंगी, आपने मुझे मैसेज करके बताना होगा. आप चाहें तो पेज पे भी बता सकते हैं, और हम जो भी विनर होगा उसकी दो रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे आज. मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, एंड द ट्रैक इज आई आई. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. So break से पहले हमने कहा था कि हम गेस द सॉन्ग का कॉम्पिटिशन करेंगे और अभी मैं वो ट्रैक आप लोग के लिए चला रही हूँ. आप लोगों ने पहचानना है और बताना है मैसेज करके कि ट्रैक कौन सा है. जो हमें सही जवाब देगा उसकी दो रिक्वेस्ट हम इंक्लूड करेंगे.

Alright, so अब आपने हमें बताना है कि ये कौन सा गाना है. मैसेज करें 3636 पर या फिर facebook.com/rj.jasminejzmani पे भी आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सा गाना है. सो मीनवाइल कुछ और मैसेजेस की तरफ हम जा रहे हैं. ओके, निमरा हैज टेक्स्टेड इन. ओके निमरा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उन्होंने कहा है आसिम अजहर का कोई ट्रैक प्ले कर दीजिएगा. चलें जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके अब्दुल्ला है एक्सीडेंट. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं. अब बताइए आप कैसे हैं. झोल सॉन्ग इन्होंने रिक्वेस्ट किया है. ओके अब्दुल्ला, कर देते हैं आपके लिए प्ले. उन्होंने कहा है जल्दी थोड़ा सा कर दीजिएगा. और ये सॉन्ग मेरी बहन को बहुत पसंद है, उसको डेडिकेट कर दें. अब्दुल्ला इफ यू आर लिसनिंग, ये ट्रैक मैं जल्दी से आपके लिए चला रही हूं. मिलते हैं इसके बाद.

Alrighty everyone, welcome back. So aap sun rahe hain FM 100. Shahid ne message kiya, assalam alaikum. Walaikum assalam. Haal jo hai bas chal hi rahe hain Shahid. Aap batayein aap kaise hain. Okay, so hum ek guess a song ka competition kar rahe hain aur main wo track aap logo ke liye chala rahi hu abhi. आपने मुझे बताना है मैसेज करके, या तो पेज पे बता सकते हो या फिर आप 3636 पर बता सकते हैं. दिस इज द ट्रैक, गौर से सुने और बताएं कौन सा है.

देयर वाज अ ट्रैक. अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा गाना है जो हमें सही जवाब देगा, और जो विनर होगा उसकी रिक्वेस्ट, हम दो रिक्वेस्ट इंक्लूड करेंगे अपने शो पे. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैक इज हमरा बाय आसिम अजहर. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty, everyone. Welcome back. Up on FM 100 Pakistan. And हम लोग अभी कर रहे हैं गेस्ट सॉन्ग का कंपटीशन जो 3 बजे जो है वो खत्म हो जाएगा. सो मैं आपको वो ट्रैक सुना दूं जो हमने कंपटीशन में लगाया है. सो आपने गौर से सुना है, मैसेज करके भी बताओ. मैसेजेस आ रहे हैं काफी सारे मेरे पास पेज पे भी और 3636 पर भी. सो एक काम करते हैं, पहले ये सॉन्ग आपको सुनाते हैं.

ऑलराइट, सो बहुत आसान सा गाना है ये. मैसेज करके आपने बताना है. हमारे पास मैसेज आया है 3636 पर शनीला का. ठीक है शनीला, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है. और पेज पे हमारे पास मैसेज आया है समी शेख का. समी शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. आपका भी जवाब हमने नोट कर लिया है. लुक वर्ल्ड का भी हमने जवाब नोट कर लिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज लुक वर्ल्ड. सो जल्दी जल्दी आप लोग हमें मैसेज करके बताइए कि गाना कौन सा है. ओके, महाम ने भी हमें मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम महाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बहकारे बाय शिराज अव्वल. ठीक है महाम, इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू. इस गाने के बाद जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे. हमारे साथ रहेगा.

0: Genie in radio. Radio.
1: Some are born to lead. Welcome to FM

Okay, Dina, welcome back. Aap suna FM 100 Pakistan. The show is called Janina Radio. शनीला हमने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है. उन्होंने कहा है अगर मेरा आंसर ठीक हो तो ये दोनों सॉन्ग लगा दीजिएगा, रहीम शाह का सबरू और आतिफ असलम का सॉन्ग हम किसके लिए जा रहे हैं. ठीक है, विनर जो है थोड़ी सी देर में मैं बताऊंगी ब्रेक से आने के बाद. सॉन्ग इतना आसान है, फिलहाल मैं दोबारा से वो चला रही हूं और ये हमारे कॉम्पिटिशन का सॉन्ग है. ओके, सो मीन वाइल अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक से वापस आने के बाद हम विनर्स अनाउंस करेंगे, क्योंकि जवाब हमारे पास काफी सारे लोगों के आए हैं और जिनके सही हैं तो हम विनर थोड़े बढ़ा देंगे. ओके, सो मीन वाइल एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi ki takbir.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02111812725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
0: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM 247365

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान. सो जनाब अभी टाइम आ गया है कि हम जो हैं कंपटीशन का विनर भी अनाउंस करें. तो बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारी कंपटीशन की विनर है शहनीला. कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो. सही जवाब दिया आपने. दोस्ती सॉन्ग है बाय नाजिया हसन एंड जुहेब. और समी शेख ने भी हमें सही जवाब दिया है. सेकंड विनर वो है. थर्ड विनर इज लुक वर्ल्ड. अगर आप भी कोई ट्रैक बताना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं. सही है. समी शेख ने भी हमें अपनी रिक्वेस्ट बता दी थी. उनकी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी डिसाइड बाय मी एंड अरमान बाय कोक स्टूडियो. ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे. मीन वाइल अभी हम शहनीला की रिक्वेस्ट की तरफ जाएंगे. लेकिन उससे पहले जो मैं सॉन्ग यूज कर रही थी, कैसा सॉन्ग के लिए आप सुन लें.

Okay, so that was the track for Guess the Song competition, Dosti by Zohaib and Nazia Hassan. काफी लोगों ने हमें सही जवाब दिया है. So meanwhile, right now, अब हम जाएंगे शहनीला की रिक्वेस्ट की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि दो सॉन्ग्स प्ले करने हैं. वो विनर भी है हमारे कॉम्पिटिशन की, टॉप विनर है. सो ये ट्रैक उनके लिए प्ले करें. द ट्रैक इज सबरू एंड इट विल बी फॉलोड बाय हम किसके लिए जा रहे हैं, बाय आतिफ असलम. सो द ट्रैक इज सबरू.

0: Radio, radio.
1: Some are born to lead. Welcome to FM 100.

Alrighty, so now welcome back, आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान एंड ब्रेक का टाइम भी आने वाला है. और शनीला, बिल्कुल आपने मुझे रिक्वेस्ट दो सॉन्ग्स किए थे जिसमें से एक मैंने आपका ट्रैक प्ले कर दिया है, बल्कि दोनों मैंने प्ले कर दिए. सबारू आपने रिक्वेस्ट किया था और हम किस गली जा रहे हैं भाई आतिफ असलम, दोनों ट्रैक्स आपके प्ले कर दिए हैं. अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम समी शेख के सॉन्ग्स प्ले करेंगे. दो उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, एक अरमान और दूसरा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बिसाइड मी बाय अजान अली बग्गा. सो अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365.
4: If you wanna be with me, I can make your wish come true.
5: I'm a genie. Ooh. Genie in radio.

in radio. Radio. Okay, Janelle, welcome back. So that was the song called Beside Me by Azan Ali Baga. And this was Sami Sheikh's request. आपकी एक रिक्वेस्ट हमने फुलफिल कर दिया है. दूसरा सॉन्ग जो है वो आपका अरमान है. तो अभी हम अब जी थोड़ी सी देर में चलाएंगे. शायद ने रिक्वेस्ट किया है, मैं मैसेज करके रिक्वेस्ट किया है, प्लीज प्ले तुम मेरे हो बाय सलीम जावेद. ठीक हो गया, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो जनाब 3:21 हो गए हैं. अभी समीशे की एक और रिक्वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. उससे पहले एक मैसेज शामिल करते हैं. निमरा ने मैसेज किया था, उन्होंने सॉन्ग बेचैनिया रिक्वेस्ट किया था. जरूर प्ले करेंगे आपके लिए, बस हमारे साथ रहिए. मीनवाइल द ट्रैक इज अरमान और ये समीशेक के लिए है.

0: रेडियो
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365. Like us on facebook.com/FM247365
0: FM 247 365. If you wanna be with me, I can make your wish come true. I'm a genie. Genie in radio.

0: to lead. Welcome to FM 100.
1: Genie in radio.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: FM247365 FM247365

0: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
1: FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरोख हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। टावर से आरामबाग और वहाँ से एमजीना रोड की जाने माने वाले ट्रैफिक पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा है, जबकि जैबुलिसा स्ट्रीट से वो ट्रैफिक जो अब्दुल्ला हारून रोड और वहाँ से एमजीना रोड की जाने जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वो ट्रैफिक जो सिंगर चौरंगी से ब्रूक चौरंगी की जानब जा रहा है उस पर ट्रैफिक का दबाव है, और फैजुमाबाद चौरंगी से बलोच कॉलोनी ब्रिज के जाने आने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जिन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
2: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
3: शौकत खानम कराची की तकदीर
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
5: 11.99%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है शराइतों से वाबित लागू है
5: 11.99%
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
10: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राबता कर सकते हैं
11: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली
12: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
11: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
12: HBL ज़रई बैंक की वजह से
11: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
12: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
13: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
14: शराइत और ज़वाबित लागू है
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
10: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं
5: 11.99%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है शराइतों से वाबित लागू है
5: 11.99%

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ खाब वहाँ HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा.
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: And via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: This is your music.

0: 5:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त fund transfer, मुफ्त checkbook, मुफ्त online banking और बेहतरीन mobile app की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
4: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
7: शरायत ज़वाबत लागू है.
8: 100 FM.
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइत और ज़वाबित लागू है.
9: 11.99%.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
12: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा.
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
14: एंड वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
15: FM247365 FM247365

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शरायत ज़वाबत लागू है।
7: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: 11.9%, 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
9: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
10: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
11: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
12: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक के टाइम भी खत्म होने वाला है।
11: अभी बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
12: इन्वेस्ट पार्क?
13: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क का पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
14: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम कराची की तकदीर।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
5: वो खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL जरिए बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शरायत जवाबत लागू है।
9: 100 FM
10: 11.9% 11.9%
11: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
12: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99% 100 FM
0: फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
14: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
16: एंड VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
17: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
18: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
19: का टाइम सी मनु ऐसे के मैं हूं कब्र च चला गया, मैं नहीं बचा।
20: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
17: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
21: एसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
17: इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वज़ गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ खाब वहाँ HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
2: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
3: And we are टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: facebook.com/fm247365
5: FM 100 FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
7: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
3: 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीतता जा।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
9: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
6: शराइत ज़वाबत लागू है।
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
12: 11.9% 11.9%
13: ओ भाई, क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
12: 11.9%
15: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
17: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
18: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
19: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक के टाइम भी खत्म होने वाला है।
18: ये बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
19: इन्वेस्ट पार्क?
17: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क का पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
19: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
20: किसने कहा था पैसे बचा?

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज है, लिहाजा इस मामले को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने और जज्बात को भड़काकर अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज करें। यह पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमनगर, across the nation.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM।
8: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
10: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
13: 11.99%, 11.99%।
14: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
15: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%। 100 FM।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
16: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
17: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
18: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
19: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
2: 100 FM।
20: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
11: 7365.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja.
2: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम कराची की तकदीर.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट.
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
10: 11.9% 11.9%
11: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
12: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
13: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
10: 11.99%.
14: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
15: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
16: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
17: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
16: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
17: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
16: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
18: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
19: शराइत और ज़वाबित लागू है.
20: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
10: 11.99% 11.99%.
11: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
12: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
13: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
10: 11.99%.
21: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
8: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
9: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
11: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
4: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
14: अल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्र पर जाएं।
15: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
16: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by HPLSI Banking के पास है poultry farm, fish farm, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

0: 6:08 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
2: 100 FM.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: This program is brought to you by HBL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
4: facebook.com/fm247365
5: FM 100.
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
7: Evening Drive Time.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
4: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: FM 100

It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by SBI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayala aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए.

0: You know what's out here on the street? Tonkara! Tell them!
1: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
2: This program was brought to you by HPLSI Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarai Alat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
2: HPLSI Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarai Alat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
1: 100 FM।
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
14: Let's celebrate
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: स्वागत खानम कराची की तकनीक।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365.

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: स्वागत फानम कराची की तकनीक।
3: Us on facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है poultry farm, fish farm, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
1: FM 247 365.

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट के साथ मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब। तीन बजे तक और तीन बजे तक सजाएंगे महफिल कुछ शेर और शायरी की, कुछ सुनेंगे मेलो मेलो से ट्रैक्स, कुछ गजलें, बात करेंगे कुछ दिल की। हमेशा से यही डायलॉग है भाई, इस शो में तो यही डायलॉग होता है, बात करेंगे कुछ दिल की। अच्छा, ये डायलॉग तो मैं अक्सर बोलता हूँ, लेकिन हम दिल की बात करते भी हैं या नहीं, सोचने वाली बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते तो हैं यार दिल की बात है भाई दिल की, लेकिन दिल की बातें ज्यादातर दिल में ही रह जाती हैं यार। अक्सर औकात हम कह नहीं पाते दिल की बात। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बता नहीं सकता, इजहार नहीं कर सकता। किसी के भी सामने, महबूब के सामने भी ऐसा होता है। आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत परवान भी चढ़ जाती, लेकिन दिल में इतना कुछ होता है जो कि बयान ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है। मैं मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सका या कर सकी, होता है या नहीं होता, ऐसा फील होता है या नहीं होता है बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि मोहब्बत करने वाले फोन पर, व्हाट्सएप पर घंटों बात करते रहेंगे, पूरी पूरी रात बात करते रहेंगे, मगर पूरी पूरी रात बात करने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे इंसान को मोहब्बत होती है, दिल चाहता है कि हर वक्त उससे बात होती रहे, उसको देखता रहे, उसकी कुर्बत हासिल करे, मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? खैर जी, कुछ जाहिर प्रोग्राम जो है बज़्म गजल बज़्म शायरी है, तो क्यों ना आगाज कुछ अशआर से किया जाए, और फिर उसके बाद आपको एक और बात बताऊं आज के शो में कि मोहब्बत की बात से स्टार्ट किया, कुछ कह नहीं पाते, एक मोहब्बत की बड़ी लाजवाल बड़ी प्यारी सी दास्तान है, वो किस्से जो है हम आज एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई मोहब्बत का किस्सा हो, खूबसूरत सी मोहब्बत का प्यारा सा एहसास लम्हा, कुछ भी आप मैसेजेस के थ्रू जरूर शेयर कीजिए, चाहे आप दो तीन लाइनों में लिख दीजिए, लेकिन आप यकीन मानिए मैं महसूस करूंगा और बहुत सी बातें ऐसी कह दूंगा जो आप लिख नहीं सके। ये वादा रहा, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप दो चार लाइनें भी मोहब्बत के एतबार से लिखें तो ऐसी हों कि दिल छू जाए। कभी गुमान कभी एतबार बन के रहा, दयारे चश्म में वो इंतजार बन के रहा, हजार ख्वाब मेरी मलकियत में शामिल थे, मैं तेरे इश्क में सरमायादार बन के रहा, उम्र तमाम उम्र उसे चाहता ना था मुमकिन, तमाम उम्र उसे चाहना ना था मुमकिन, कभी कभी तो वो इस दिल पे बार बार रहा, उसी के नाम करूं मैं तमाम अहदे ख्याल, उसी के नाम करूं मैं तमाम अहद ख्याल, दरूने जान जो मेरे जो मरे सोगवार बन के रहा। ये जनाब चंद अशार गालिब अयाज साहब के मैंने आप लोगों की समातों की नजर किए, और अभी आपको लेकर चलते हैं एक बहुत प्यारी सी गजल की जानिब, समात फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पहला इंतखाब आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं जनाब, उसके बाद फिर कुछ कहेंगे हम, सुनिएगा वाकयात। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले फीता काटा है हमारी प्यारी सी बहन सबा गुल ने, और सलाम के बाद कह रही है कैसे हैं भाई आप। स्वीट लाला को, संजीदा आप ही को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम के बाद कह रहे हैं यूसुफ भाई पापोशे के तमाम सुनने वालों को और एफएम 100 की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी को, चाची को और अरूसा जी को। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब संजू आ गई हैं और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, रूहे मन सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं, रब्बे ताला हमेशा आप पर मेहरबान रहे, इलाही आमीन। बज़्म शायरी में दिल की खुशगवार, मीठी मीठी सी धड़कनों की धक धक से खुशामदीद कहती हूँ, कैसे मिजाज है। हाय अल्लाह जी, ओके टेक है। अच्छा आपका मैसेज और आगे बढ़ाता हूँ, आप अक्सर लिखती हैं धक धक, तो तमाम सुनने वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा कभी अपने दिल की धड़कन की धक धक कभी खुद को सुनाई दी है आपको, बताइएगा। कहती हैं कि वो दिल की बातें जमाने जमाने को ये करीब कर लिया मैंने भाई, वो दिल की बातें जमाने को ये यूं सुनाता मुझे बताता, वो एक दफा तो मेरी मोहब्बत को आजमाता मुझे बताता। मेरी रूह है मन इंशाल्लाह इख्तिताम तक साथ रहूंगी, चाहे जिंदगी हो या सांसों की दौड़ साथ हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और ये सांसों की दौड़ जो है ता कयामत रहे। और कहती हैं कि मुनीर उसने सितम किया कि शहर छोड़ दिया खामोशी से के साथ, मैं उसकी खातिर ये दुनिया छोड़ जाती मुझे बताता। अपने बहुत ख्याल रखिए, फकत आपकी संजू आपकी रोहमन, क्या बात है जनाब। बहुत खूबसूरत इंतखाब इनकी जानिब से आए हैं जो कि हम शो में गाहे बगाहे शामिल करते रहेंगे। और मिर्जा साहब आ गए हैं जनाब गुज्जर खान से, सलाम के बाद कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब, सोने हो तो सा ठीक हो जी, बिल्कुल ओके टेक। और वाह वाह जबरदस्त, क्या कहने हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत, खूबसूरत आगाज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शहजादे भाई। नौरीन बहना भी आ गई हैं आज जल्दी जल्दी से, क्या बात है। कह रही अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। प्यारे नदीम भाई कैसे मिजाज हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम प्यारे प्यारे से लिसनर्स के लिए भी। और मुझे संजीदा बहना ने बताया कि आपने मुझे कल बहुत याद किया, मैं कल सो गई थी, बहुत थकी हुई थी इसलिए पता नहीं चला कि कब नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। खुशकिस्मत है कि इस तरह नींद आती है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, अगर सुकून की नींद आती है तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। वरना प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और उसके अलावा जमाने के सताए हुए पूरी पूरी रात करवटे बदलते रहते हैं। और कहती हैं कि एक ही धागे में पिरोए हैं हम दोनों, याद रखना टूट गई मैं तो बिखर तुम भी जाओगे। वाह वाह वाह, इनके भी कुछ इंतखाब आए हुए हैं वो भी शामिल करेंगे, पहले जरा मैसेजेस हो जाएं आप सबके। मुश्क आ गई हैं भाई, क्या बात है क्या बात है। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है। कल शो हाफ ब्रेक के बाद अच्छा हो गया था, दिल भी लग गया था, आज तो शायरी की बज़्म सजेगी। आप भी शुरू में हैंडसम अच्छा सा इंतखाबी
کلام اچھا سناتے ہیں. آپ کے شو کے تمام فیملی ممبرس کو آداب. آج شو میں جوکس یعنی کہ لطیفوں سے پرہیز کریں گے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. رومانٹک ماحول ہوتا ہے, آپ کی دل میں اترتی آواز اور انداز کا اس وقت بہت اثر ہوتا ہے. ان کا بھی ایک انتخاب ہے تو مشک آپ کا بھی انتخاب ہم ضرور شامل کریں گے. لالا بھی آ گئے ہیں آج, کیا بات ہے بھائی, مطلب رونقیں بحال ہو چکی ہیں جناب. اور کہتے ہیں کہ جان جگر یا حبیبی آپ کو, سبا گل کو, مشک کو, مہنور کو, شیرمانوں کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام, اور ہینا گل کو سلام اور ڈھیر ساری دعائیں, ڈھیر ساری. اور لالا کے بھی انتخاب آئے ہوئے, کیا بات ہے بھائی, آج سبھی موڈ میں ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. علیم الدین یوسف زہی صاحب کا میسج ضرور پڑھیں گے بھائی ہم پہلے, کیونکہ اس میں دیر اکثر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب, السلام علیکم. آپ کی خدمت اقدس میں اپنی ڈائری سے منتخب اشعار پیش خدمت ہیں. اور محی الدین ہمدم شاعر ہیں جو کہ ہمارے علیم الدین صاحب کو بہت پسند ہے اور ہمیشہ انہی کا انتخاب یہ بھیجتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ باتوں سے جھڑے پھول تو رسکانوں میں گھل گئے, یہ طرز تکلم بھی ہے ایجاد کس کی, شرما کے جھکی کوئی نظر, شیر یہ سن کر اب اور مجھے چاہیے کیا داد کسی کی. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. کچھ کی قسمت میں ہے بن دیا کٹیا کا, سب بنے شمائیں شبستان یہ ضروری تو نہیں, مانگ اجڑی ہے یہاں دیکھو تو کتنوں کی سہی, مانگ میں سب کی ہو افشاں یہ ضروری تو نہیں. دن کا اجالا ظلمت شب, نظروں کا تعقب اور موسم, تمہیں نہ ملنے کے مجھ سے کتنے ہی بہانے آتے ہیں, یہ گیسوئے رخ سے ہٹاؤ کہ دور ہو ظلمت, نہیں یہ وقت نہیں چاند پہ گہن کے لیے. تمام ریڈیو سامعین کو انہوں نے سلام کہا ہے, خصوصی طور پر میرے والد محترم کو بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے انتخاب کی جانب جاؤں, ایک ارے ہاں کچھ اور میسیجز بھی ہیں. انعام الحق ہمارے پیارے سے بھائی آ گئے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ, اور آنٹی کو, چاچی کو اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے. اور ہماری پیاری سی چاچی جو ہیں وہ بھی سن رہی ہیں, چاچی شاد رہیں آباد رہیں. اور جناب ایک منٹ,

चाची ने कहा है कि सलाम नदीम, मुझे आज चाचा की डायरी मिली है। और व्हाट्सएप करूंगी, सब रीड कीजिएगा। बिल्कुल करूंगा। खैर चाची, आपके इस मैसेज से मैं बहुत जज्बाती हो गया हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अल्लाह आपको सलामत रखे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके इंतखाब जो है वो जल्द अज जल्द शामिल करें, मगर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा वाकया जो है, वो एक किस्सा जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। थोड़ी सी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ शो के मिजाज के मुताबिक ये एक इंफॉर्मेशन है। कल के शो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि शमशाल वादी, वादी शमशाल जो है वो कहां है। अच्छा, नाम भी नहीं सुना हुआ था। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं कि मुस्तनसर हुसैन तारड साहब जो हैं, उन्होंने इस हवाले से बहुत खूबसूरत एक किताब लिखी है, शमशाल, वादी शमशाल के हवाले से। तो वादी शमशाल है कहां, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। वादी शमशाल हुंजा के समझ लीजिए कि बिल्कुल कोने पर है, और वो ऐसे कोने पर है कि वादी शमशाल समझिए कि पाकिस्तान का आखिरी किनारा है। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है वादी शमशाल। और हुंजा का जो तहसील है गुजाल, वहां से तकरीबन समझ लीजिए 55 से 60 किलोमीटर है। अब ये 55-60 किलोमीटर का फासला अगर हम शहरी लोग जो है वो इस हवाले से सोचें तो ये एक घंटे से भी पहले इंसान पहुंच सकता है, मगर अगर आप गाड़ी में हों या बाइक पर भी हों तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे में ये फासला तय करते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बड़ा ही पथरीला है, कोई रोड मेन बनी नहीं हुई, पहाड़ों को काट काट के जो है वो रास्ता बनाया हुआ है शमशाल वैली की तरफ अगर आप जाना चाहें तो। अब शमशाल वैली जो है वो बड़ा ही एक पहाड़ों के बीच में छोटा सा मैदानी इलाका है, और ये दरियाफ्त जो हुआ ये 1450 में दरियाफ्त हुआ। हम 2026 में हैं, 1450 में दरियाफ्त हुआ। खूबसूरती तो खैर अपनी जगह ही, आपको अल्लाह ताला याद आ जाएगा। खूबसूरत पहाड़, पथरीले पहाड़ भी हैं, उन पथरीले पहाड़ों में आबशारें भी हैं। और ये जो वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं और जो मंजरनामा आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस मंजरनामे में दिल वाले जो है ना वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो बड़ा इंजॉय करेंगे। तो इसी वजह से मैं इस मंजरनामे को आप लोगों के सामने जो है वो पेश कर रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको एक बात ये बता रहा था कि अगर आप उस तरफ जाएं तो पथरीले पहाड़, और उन पथरीले पहाड़ों में खूबसूरत किस्म की आबशार, आपको आबशारें नजर आएंगी, साथ में बहता दरिया नजर आएगा। तो वो बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर पेश करता है। और जैसे जैसे आप शमशाल वैली के करीब जाते जाएंगे तो पहाड़ों पर सब्जा भी नजर आना पड़ेगा, शुरू हो जाएगा। और फिर जब और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये मंजरनामा तो मैं आपके सामने पेश कर ही रहा हूं। और जब आप शमशाल वैली में जाएं तो वहां पर खेत भी हैं, खुमानियों के दरख्त लगे हुए हैं जो कि तोड़कर ताजा ताजा आप खाएं, मीठी मीठी खुमानी, खुबानी सॉरी। तो लेकिन ये खुशहाल जो है 1450 में दरियाफ्त कैसे हुआ, इसकी बहुत खूबसूरत सी कहानी है। एक शख्स था मामू सिंह, क्या नाम था उसका, मामू सिंह। मामू सिंह जो था वो, उसका काम ये होता था कि वो हुंजा का रहने वाला,
لیکن اس کا گزر بسر پہاڑوں پر چڑھ کر ہوتا تھا، شکار کر کے ہوتا تھا، شکاری سمجھ لیجئے مامو سنگھ صاحب تھے، اور وہ پہاڑوں پر

और वो पहाड़ों पर चढ़ते थे और मारखोर का शिकार करने की भी कोशिश करते थे, मारखोर का शिकार भी करते थे और शिकार के सिलसिले में दूर दूर निकल जाते थे और इसी तरह उनका गुजर बसर होता था। तो एक दिन मामू सिंह जो है वो जब शिकार के लिए गए तो उसके बाद चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां पर उसको एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की नजर आई। उस लड़की का नाम था खतीजा। उन्होंने जब खतीजा को देखा तो पहली नजर में उनसे मोहब्बत हो गई। मामू सिंह कभी किसी इलाके में टिक कर नहीं बैठे, लेकिन खतीजा के हुस्न का सहर जो है उसने उनको वहां पर रोक लिया और वो उसको देखकर मुस्कुराते थे। अब आप सोचें, हुंजा की खूबसूरत वादी और उसमें एक खूबसूरत सा चेहरा जब आपको नजर आए तो कैसा लगेगा, और वो कितना हसीन चेहरा होगा कि जो कुदरती नजारे जो इंसान देख रहा है वो भी उसके चेहरे के सामने मान पड़ जाए। मामू सिंह ने उनको पसंद किया, मोहब्बत परवान चढ़ी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। मामू सिंह के एक भाई भी थे जिनका नाम था चू सिंह, ठीक है जी। और ये क्योंकि बड़ी खूबसूरत सा वाकया है, मोहब्बत का वाकया है, तो वहां पर गुजर बसर होने लगा। तो एक दिन इसी तरह वो शिकार के लिए निकले और शिकार ना मिलने की वजह से वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और वो इतना दूर निकल गए कि उनको पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा मैदानी इलाका नजर आया। छोटा सा मैदानी इलाका, बहुत बड़ा नहीं, और वहां पर उनको कुछ हरियाली भी नजर आई, तो वो वहां चले गए। जब उन्होंने वहां पर देखा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी जमाने में यहां पर आबादी वगैरह रही होगी, इंसानों का बसेरा रहा होगा। उनको वो इलाका बड़ा अच्छा लगा, सरसब्ज भी था, पहाड़ भी, दूर से ग्लेशियर भी नजर आ रहे हैं। और उसी दरमियान में उन्होंने जब उस इलाके का थोड़ा सा सर्वे किया तो उनको कुछ किनाल के चैनल्स नजर आए। मतलब इसको मैं बहुत ही आसान उर्दू में बता दूं कि नदी जो है उसके बांध टाइप के नजर आए जो कि बंद थे सारे। बस उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जो है हम यहीं रहेंगे। वहां से चले, अपनी बीवी को साथ लिया, भाई को साथ लिया और उस जगह आकर शमशाल वैली में वो आबाद हो गए अकेले, एक ही फैमिली। और उन्होंने वो जो पानी के बांध थे वो खोले और वहां पर खेती बाड़ी की और उसके साथ साथ वहीं रहने लगे। तो शमशाल वैली में अभी भी अगर आप जाएं तो मामू सिंह की मोहब्बत की ये दास्तान जो है वो सुनाई जाती है। और ये वहां छोटा सा एक समझ लिए गांव है, वैली, छोटी सी वैली है ये, लेकिन बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी है। अगर आपको इंटरनेट यूज करना आता है तो आप सर्च जरूर कीजिएगा। वहां की जो जुबान है वो है ब्रोशास्की, ब्रोशास्की जुबान कहा जाता है। ये ओरिजिनली यू कैन से जी हुंजा की भी जुबान है। खैर जी, ये सारा सिलसिला था, मैसेजेस आपके आ रहे हैं। एक खूबसूरत सा मोहब्बत का वाकया आपको बताया कि एक मोहब्बत की वजह से जो है वो एक दरियाफ्त हो गई वैली, शमशाल वैली। तो एक जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ और मोहब्बत की बात भी हो गई। और अब जो है हम आपके मैसेजेस की जानिब जाएंगे, मगर पहले जो है आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत की जानिब लेके जाते हैं, वो समाप्त फरमाइए, एंजॉय कीजिए और फिर वापस आते हैं।

वेलकम बैक सुनियो मेरी प्यारी सी चाची जो हैं उनकी अभी कॉल आई थी और मेरी चाची से बात भी हो रही थी और चाचा के कुछ इंतखाब जो हैं वो उन्होंने भेजे और ऐसी बातें की कि दिल हिल गया यार मेरा। आप यकीन मानिए चाची, आपके लिए बेतहाशा दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। और एक बात उन्होंने ऐसी की कि यार मैं बड़ा परेशान हो गया यार उस बात से, मैं आपको बताता हूं वो बात। उन्होंने कहा कि शादी जो होती है ना, कहेंगी शादी जवानी के लिए नहीं होती है, शादी बुढ़ापे के लिए होती है, एक दूसरे के साथ के लिए होती है, जिंदगी के साथ के लिए होती है। खैर चाची, चाचा का जो इंतखाब है वो आपने मुझे भेजा है वो मैं जरूर शामिल करूंगा, लेकिन ये शेर व शायरी का मामला कुछ ऐसा है कि क्यों एक ही जे जबर पेश आगे पीछे हो जाए तो शेर अपनी जो है वो अपना वजन खो देता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि चाचा के प्यारे से इंतखाब, चाची ने यह बताया कि इंतखाब उन्होंने अपने पास लिखे हुए थे और चाचा की राइटिंग में ही उन्होंने मुझे भेजे हैं और कहा कि चाचा कहते थे कि मैं नदीम के प्रोग्राम में जो है वो पढ़ूंगा। चाची, चाचा की आवाज कहां से लाएं। खैर, मैं उसको जरा थोड़ा सा रीड करूंगा चाची और उसके बाद उसको शामिल शो करूंगा। एनीवे जनाब, आपके मैसेजेस आए हुए हैं और हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर भी आ गई हैं, सलाम कह रही हैं, कह रहे वाले साहब कैसे हैं, संजू कैसी हैं, तमाम सुनने वालों को भी सलाम कहा है। और अयूब आफरीदी लाला कह रहे हैं कि सबा गुल, मुश्क, महानूर, हिना गुल और शेरमानो को एक अपनी पसंद की गजल प्ले करके डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब। और अब आते हैं जनाब आपके खूबसूरत से इंतखाबों की जानिब। पहला इंतखाब हम शामिल करेंगे जनाब संजू का, फरमाइशी इनबॉक्स। कहा कमाल लिखते हो, एहसासों का मेरी एहतमाल लिखते हो, किसी के चेहरे को चांद, गालों को बदली, आंखों को शमे, गर्दन को सबू, लबों को जाम और जुल्फों को जाल लिखते हो। कुछ मुझ पर भी लिखोगे, अपनी तस्वीर भेजूंगी तुम्हें, लिखोगे कि मैं सुंदर हूं, मेरी आंखों को क्या कहोगे, समंदर कहोगे, झील कहोगे, चराग, शमा या फिर स्याह रात का जमाल लिखोगे। अच्छा, मेरे गालों पर शफक को इस्तआरा करोगे या फिर रंगों की बरखा कहोगे या फिर किसी पहली रात की दुल्हन की लज्जा लिखोगे, धनक लिखोगे या हया लिखोगे, रुई सी बदलियां तो सब कहते हैं, ये बताओ तुम क्या लिखोगे, दहकते हुए गुलाब लिखोगे, सुर्ख भाप के गर्दाब लिखोगे, गर्दन को देखकर क्या उभरेगा जहन में, सबूतों पुरानी हुई कोई गुलदान ही लिख देना, गुलदान जिसमें गुलाब सूखे पड़े हों। अच्छा चलो, तुम उसे वाजिबे कताल लिख देना, लबों को शराब मत लिखना, तुम उन्हें हलाल लिख देना। वाह वाह वाह, क्या बात है,
वाह। तुम उसे वाजिबे कताल लिख देना, लबों को शराब मत लिखना, उससे उन्हें हलाल लिख देना, बाहों को देखकर किसी मुसव्विर का ख्याल लिख देना, जुल्फों को चाहे तुम बलाए जान और एक वबाल लिख देना, अरे जो तुम चाहो मेरी जान वही अहवाल लिख देना। मगर सुनो ये सब तो जाहिरी है, एक दिन गुल जाएगा ये जोबन मेरा ढल जाएगा, तुम यूं करो कि मेरे दिल का हाल लिख दो। क्या बात है, तुम यूं करो मेरे दिल का हाल लिख दो, मेरी धड़कनों में कई रास की बातें हैं, वो बातें जो मैं खुद से भी कर नहीं सकती, करूं तो लाज आती है, तुम यूं करना मुझे एक आम से चेहरे वाली, आम से खुलिए वाली, आम सी सोचों वाली लड़की लिखना, लेकिन मुझे मेरे जज्बों में बहुत ही कमाल लिखना, तुम मेरे अंदर के सभी अहवाल लिखना, एक सूद और रंज मुटियार लिखना, एक जोर और रंज मुटियार लिखना, तुम मुझे बस बदहाल लिखना, उदासियों की जाल लिखना, मेरे खदो खाल लिखना, ये भी लिखना के तुम पर मर मिटी हूं मैं, लेकिन मर के बाद वक्फा देना लंबा सा, फिर

वेलकम बैक कहेंगे काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता। गुड नाइट नदीम भाई, टाटा। एसगुल कह रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपने गजल सुन ली होगी। काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता। जाहिद साहब क्या खूब लगी है आपको ये गजल कि आपने मैसेज कर दिया, थैंक यू वेरी मच। और लाला कहते हैं कि बहुत खूब, अच्छा और बेहतरीन गजल, वाह वाह जिगर, ये हुई ना बात। मैसेजेस कीजिए जनाब 3636 पर। अच्छा जरीन नूर मेरी बहना का मैंने मैसेज पढ़ा था, मेरा ख्याल है बिल्कुल पढ़ा था। और शामिल करते हैं जनाब, और मुश्क कहती हैं, उनका इंतखाब भी शामिल करें ना जनाब, उन्होंने भी बहुत कुछ भेजा है। कहती हैं मुझसे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझसे तुमसे मुझे तुमसे मोहब्बत है। और उसी ढलते हुए दिन की मुढ़ेरों पे चरागे शाम जलता है, तो दस्ते मेहरबान जैसे मेरे आंचल के कोने से वफा का एक लम्हा बांध देता है। मेरे सहने हुनर में हरफो मायने की तिलावत सांस लेती है, कोई रोशन सितारा आसमान पर मुस्कुराता है, समंदर गीत गाता है, कोई चुपके से कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है। नौशी गिलानी की ये एक गजल है, ये इंतखाब है जो कि मुश्क ने भेजा। भाई बहुत खूब, और कह रही है वाह हैंडसम। और जनाब आगे बढ़ते हैं, लाला कहते हैं, लाला का भी इंतखाब होना चाहिए ना जनाब, उन्होंने भी भेजा था। और कहते हैं लाला कि मुझे मोहब्बत से, उस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो, दिल मेरा हार गया बोल उठा इश्क करो, रोगे तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है, कब तलक दोगे जवानी को सजा इश्क करो इश्क करो, कब तलक राह तकोगे किसी हरजाई की, दिल की उसमें भलाई है नया इश्क करो। ये बहुत खूब था भाई। कब तलक राह तकोगे किसी हरजाई की, दिल की इसमें भलाई है नया इश्क करो इश्क करो, इश्क फिर इश्क है सब लोग ही करते हैं यहाँ, तुम अगर खास हो तो सबसे जुदा इश्क करो। सर पकड़ते हैं बिलकते हैं तड़पते हैं अभी, तो कोई आपसे कहकर गया था इश्क करो। लाला कहां से लाए ढूंढ के, बहुत खूब। ये तो हरजाइयों के लिए है और आप हरजाई नहीं है। लाला के और भी इंतखाब है, वो भी शामिल करेंगे। अब एक एक करके सबके इंतखाब शामिल कर रहा हूं। और अब जो है इनाम साहब का आया, आया तेरा ख्याल बड़ी मुद्दतों के बाद, आया तेरा ख्याल बड़ी मुद्दतों के बाद, पूछा किसी ने हाल बड़ी मुद्दतों के बाद, दिल फिर से धड़का तेरे नाम पर, चुप था जो जख्म बोला बड़ी मुद्दतों के बाद, रातें कटी थी तेरी याद में, नींद आई आंखों में बड़ी मुद्दत के बाद, हमने भी सीख लिया जीना तेरे बगैर, मुस्कुराते होंठों पे बड़ी मुद्दतों के बाद, मुस्कुराए होंठों पर बड़ी मुद्दतों के बाद। भाई क्या बात है भाई इनाम साहब, बहुत आला बहुत आला। अभी हम जाएंगे जनाब एक और इंतखाब की जानेब, और उसके बाद हम आपको एक गजल की जानेब लेके जाएंगे। और संजू का पहला इंतखाब बहुत आला था, अब उनके दूसरे इंतखाब की जानेब बढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी
کہتی ہیں عشق کا دوسرا آسمان. سنو میرے روح من, میری دلربا, تو میرے وجود کا وہ حصہ جو مجھ سے بھی پوشیدہ ہے. تم نہیں جانتی کہ تم میرے اندر کیسے زندہ ہو. تم وہ آواز ہو جو میرے خاموش لمحوں میں گونجتی ہے, وہ روشنی ہو جو میرے اندھیروں کو اپنا آئینہ بناتی ہے. میں تمہیں چھو نہیں سکتا میری روح من, مگر تم میرے ہر خیال کو چھو لیتی ہو. میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا, مگر تم میرے ہر خواب کا مرکز ہو. تم وہ دریا ہو جو میرے ہونے کا ساحل ہے, اور میں وہ قطرہ ہوں جو تم میں گم ہو کر بھی پورا ہے. تمہارا ذکر میرے لفظوں کی معراج ہے میری روح من, تمہارا ہونا میرے نہ ہونے کی پہچان ہے. میں جب خود کو بھولتا ہوں تو تم مجھے مجھ سے ملا دیتی ہو, اور جب خود کو پاتا ہوں تو تم ہی مجھ میں چھلکتی ہو. میری دلربا, یہ رشتہ کوئی عادت نہیں, یہ کوئی مجبوری نہیں, یہ تو میرے ہونے کی وہ اساس ہے جو پر میری ساری تعمیر قائم ہے. تم میرے اندر کا وہ سکوت ہو جو شور میں بھی سنائی دیتی ہے, تو میرے باہر کا وہ شور ہو جو تنہائی میں بھی رہتی ہے. محبت کیا ہے میری روح من, میں نے سوچا تو تم ملی, میں نے سوچا تو تم ملی, میں نے پایا تو محبت مل گئی. اب تم اور میں اور محبت تینوں ایک ہیں, اور ایک میں تینوں کا جہاں بسا ہے. مجھے نہ جانو, مجھے نہ پہچانو, بس میرے لفظوں کو تم اپنا آئینہ سمجھو, کیونکہ یہ لفظ نہیں میری دلربا, میری روح من تمہارا عکس ہے, میرا عکس ہے, ہمارا عکس ہے, میری شاہ, میری روح من, میری روح من. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اسی بات پر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی غزل کی جانب. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی.

वेलकम बैक। होंठ नीचे का कुछ हाय हाय हाय, क्या शायरी है, जबरदस्त। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी पसंद आई होगी वंडरफुल जावेद अख्तर साहब की गजल। जुबान से मत बोलिए। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि लवली ब्रदर है, नाम नहीं लिखा हुआ, वो अक्सर नाम नहीं लिखते। और जनाब, आपको एक बात और बता दें, इस्लामाबाद से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ एक बहुत ही जबरदस्त से आरजे, खूबसूरत आवाज के मालिक शेख उवैस साहब भी सुन रहे हैं और उन्होंने सलाम कहा है। जी वालेकुम अस्सलाम, और हमारी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। आरजे जो है वो बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, किसी दूसरे आरजे का शो वक्त भी नहीं होता, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ रहिएगा, हम आपको बहुत खूबसूरत सी गजल डेडिकेट भी करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और संजू को भी गजल बहुत पसंद आई है, यानी कि रूह मन को। और जनाब, एक और इंतखाब, ग्रेट जावेद अख्तर साहब सलूट इनको, क्या अदायगी है, क्या अंदाज है, ये कह रही हैं फरहीन। और उन्होंने एक इंतखाब भी भेजा, वो भी हम शामिल करेंगे। पहले मैसेजेस सारे आपके पढ़ लिए जाएं। और मिर्जा शुजा साहब गुज्जर खान से कहते हैं कि भाई द ग्रेट लेजेंड मोहतरम जावेद अख्तर साहब, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फरहान भाई, हाय हाय, हमारे फरहान भाई का भी एक इंतखाब है, इंतखाब सारे अभी शामिल करूंगा, डोंट वरी। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को इससे पहले वाली गजल रंजिशी सही पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्क कहती हैं बहुत आला, संजू ने इंतखाब भेजा, आपने जबरदस्त पढ़ा, मजा आ गया, आपने तो जान डाल दी हैंडसम, हाय लजी। शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे अलीमुद्दीन साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि हमने उनके इंतखाब को शामिल किया, इस तरह तो होता है जनाब इस तरह के कामों में। तो बढ़ते हैं जनाब आप लोगों के इंतखाब की जानिब, और अभी हम शामिल शो करते हैं फरहीन, जो कि दुबई से इतनी दूर से उनका इंतखाब आया है। कहती हैं कि लोग कहते हैं जमाने में मोहब्बत कम है, लोग कहते हैं जमाने में मोहब्बत कम है, अगर ये सच है तो इसमें हकीकत कम है। चंद लोगों ने अगर महफिल बना रखी है,

आ रखी है। इसका मतलब नहीं कि शहर में गुर्बत कम है। एक हम ही ना थे जो यूं फरामोश हुए, वरना भूल जाने की उस शख्स को आदत कम है। क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर, वैसे भी अब उसे अपनी जरूरत कम है। सागर सिद्दीकी साहब का इंतखाब ये भेजा, क्या बात है भाई। तो आप अभी उठी हैं फरहीन, चाय शाय पिए, खाना वाना खाया आपने। फरहान भाई का इंतखाब, एक चेहरे पे उड़ गया हूं मैं, अड़ गया हूं मैं, क्या बात है। देखिए ये जे जबर पेश जो है ना, शेर का वजन सारा खत्म कर देती, और जब उर्दू रस्मुल खत में आप भेजते हैं तो जे जबर पेश तो लगी नहीं होती, तो अंदाजा चल रहा होता है। तो दोबारा से शामिल करते हैं, एक चेहरे पे अड़ गया हूं मैं, किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। अब ये तो है या तू है, तू समझ हिजर मेरी मर्जी है, तू समझ खुद बिछड़ गया हूं मैं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, मजा आया। एक चेहरे पर अड़ गया हूं मैं, किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं, तू समझ हिजर में मेरी मर्जी है, तू समझ खुद बिछड़ गया हूं मैं। ऐ मेरे बखिया गिर तेरे सदके, रूह तक तो उधड़ गया हूं मैं। जिसे गुलदान खिजां के मौसम में, जिसे गुलदान खिजां के मौसम में, देखो कितना उजड़ गया हूं मैं। जे जबर पेश, जैसे गुलदान खिजां के मौसम में, देखो कितना उजड़ गया हूं मैं। तेरी इसलाह का नतीजा है इस कदर जो बिगड़ गया हूं मैं। नील गोर झील ये बताती है, तेरी आंखों को लड़ गया हूं मैं। जी एम नजम साहब का इंतखाब। अब इसमें, ऐ मेरे बखिया गर तेरे सदके, रूह तक तो उधड़ गया हूं मैं। इसमें बखिया और उधड़, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और आगे बढ़ते हैं जनाब, दो इंतखाब शामिल कर लिए हमने। और नौरीन भैना ने तो नहीं भेजा, नहीं भेजा, किसी और का भी इंतखाब था मेरे ख्याल में। हाँ जी, आगे इंतखाब, तीसरा इंतखाब शो में शामिल कर रहे हैं जनाब। और ये इंतखाब है रूह मन का। दो इंतखाब तो इनके कमाल के थे, और तीसरा इंतखाब भी उम्मीद करते हैं कि कमाल का होगा। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही दिलकश गजल की जानिब। तो जनाब कहती हैं, सुनो ऐ मेरी रूह के मसीहा, मेरी रूह जो जख्मों से बोझल थी, तुमने उसे अपने दस्ते मसीहाई से उन पर जो मरहम रखा, वो हजारों साल की रियाजत करते जोगी के पास भी दस्तयाब नहीं। सुनो ऐ आलम अरवाह में मेरी हमसायगी इख्तियार करने वाले, इस जमीन पर तुम्हारे तलाश ने मुझे एक तवील अरसे तक बेचैन रखा, मेरी रूह ने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। सुनो, ऐ वो शख्स जिसके कंधे पे मेरे सर ने नहीं मेरी रूह ने कंधा रखा, तुमने मुझे मेरे ऐबों समेत चाहा, और मेरी नादीदा बिखरी हुई सोचों को यकजा करके एक नया मुस्बत रंग दिया। सुनो ऐ नासाए रूह मन, तुम्हारी मौजूदगी रूह की बका है, मेरी बका है, मेरी रूह मन।

वेलकम बैक आएंगे। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। हमारे प्यारे से चचा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। उनका एक और इंतखाब है, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप सबसे भी माजरत चाहूंगा और हमारी प्यारी सी चाची से भी माजरत चाहूंगा। जेर जबर पेश वाली कहानी जो मैंने आपको बताई। कहते हैं कि महफिल में आ गए हैं जी खोल कर हसीए, तन्हाई में रोने को तो एक उम्र पड़ी है। वाह, मांग कर तोहफा नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिल। मांग कर तोहफा नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब किया है जिसने। खामखा वही करेगा हंसने से परहेज, कब्ज जिसको है या जुलाब लिया है जिसने। बहुत खूब। अच्छा एक और है और वो मुझे थोड़ा सा, अगर उसमें कोई गलती उसमें भी हो जाए तो माजरत चाहूंगा। एक मिसरे का एक लफ्ज बस मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल में एक निजात दहिंदा जरूर हो, सर रख के जिस पर रोएं वो कंधा जरूर हो। माशूक हो हसीं ये जरूरी नहीं, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। बहुत खूब ये दो इंतखाब, और मैं इनको दोबारा जो है ना बहुत प्यार से मोहब्बत से सही तरीके से रीड कर जरूर शामिल करूंगा। और चाची के लिए बहुत सारी आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। संजू के मैसेजेस, रूहेमन के मैसेजेस, आपके वेलकम का थैंक्स, सॉन्ग का थैंक्स। सबसे बड़ी बात, आप जावेद साहब के फर्जंद है, सैल्यूट किया है और अंदाज काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैस भाई, ये आपकी हुस्ने समात है, वरना बंदा है ना चीज अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। और आगे बढ़ते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं, धड़क वाह वाह, दिल धड़कने का सबब, मतलब पसंद आ रहा है भाई सबको, इंतखाब पसंद आ रहे हैं सब, ये बहुत अच्छी बात है। वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है, तो एक रूठा हुआ थोड़ा सा उदास गाना है वो शामिल करना है, एक गजल, क्योंकि मेरी प्यारी सी बहन जो है नौरीन तौसीफ, उसकी फरमाइश है। मगर उनकी इस फरमाइश को आपकी समातों तक पहुंचाने से पहले उनका एक इंतखाब जो है वो आप तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद फिर आपको ये गजल सुनाएंगे। कहती हैं, बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के ना देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज।

0: वेलकम बैक। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या?
1: क्या बताएं भाई, क्या बताएं?
0: मैसेजेस आप 3636 पर कर रहे हैं और किसी ने भी नहीं बताया भाई, अपने इश्क का किस्सा कोई बताता ही नहीं। हमने क्या क्या किया, लोग मजाक उड़ाएंगे यार। यही बात है, यही वजह है कि दिल की बात दिल में ही रह जाती है, खुसूसी तौर पर मोहब्बत में। माँ सिवाय उन शौरा के जो कि अपनी मोहब्बत के किस्से अपने शेरों में जो है वो इस तरह पिरोते हैं कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यार ये हम ही हैं, ये हमारे दिल की अक्कासी कर रहा है भाई। चाहे वो दुख से भरे हुए हों, दर्द से भरे हुए हों, मोहब्बत से भरे हों, खुशियों से भरे हों, क्योंकि शायरी में तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जनाब, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और हम एक और इंतखाब जो है वो शामिल करेंगे शो में, और वो इंतखाब है जनाब संजू का, और ये आखिरी इंतखाब है इनका जो कि शो में हम शामिल कर रहे हैं।

इस सदी के लोगों ने रोमांस के मायने कितने बदल दिए हैं। मेरे लिए रोमांस वो है जब आप किसी की बंद आंखों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर महसूस करो, जब आप किसी का हाथ पकड़े लंबे रास्तों पर चलते जाओ, किसी के कंधे पर सर रखे खामोशी से उसके बाजू को पकड़े रखो कि वो उस मजबूत गिरफ्त से निकल ना पाए, कोई आपके हाथों को अपने हाथ में लेकर आपको अपनी आंखों के हसार में कैद कर ले, या कोई आपके बालों में आराम से उंगलियां फेरे। ये सब बेहतरीन होते हैं। मैं एक पुरानी रूह हूं जो 21वीं सदी में कैद है, और मैं कहता हूं ऐसी रूहें पुरानी नहीं होती। ये जो लम्हात हैं जिनका इजहार अपने दिल की गहराइयों से कर रही हूं, अगर तुम ये महसूस करो कि कोई तुम्हारे बालों में आराम से उंगलियां फेर रहा है, और वो उंगलियां उसकी हैं जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो यकीन जाने कि वो सुकून मिलता है जो शायद जन्नत में मिलता हो। उसका हाथ थामे जब मैं लंबे रास्ते पर चलती हूं, तो ऐसा लगता है कि ना आसमान है ना जमीन है, ना कोई दाएं है ना कोई बाएं है, बस ये हाथ मेरे हाथ में है और मैं महफूज हूं। ऐ मेरे रूह मन, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, मेरे रूह मन। बेहतरीन इंतखाब जनाब, क्या बात है, क्या एहसास है जो कि इस इक्तबास में लिखा है। इसमें चंद अपनी जानिब से भी मैंने चीजें भर दी हैं, और कहती हैं कि दिल की बातें वो जज्बे और एहसासात जो इंसान के अंदर छुपे होते हैं और उन्हें बयान करने के लिए लफ्ज का इंतखाब अक्सर मुश्किल हो जाता है। खामोशी का सुकून कभी कभी दिल की बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती, बल्कि खामोशी और आंखों से ही समझ आ जाती है जज्बात की गहराई, खुशी, गम, उम्मीद और उदासी सब मिलकर दिल की दुनिया बनाते हैं। अपनों की तलाश, इंसान हमेशा ऐसे शख्स की तलाश में रहता है जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख सके, और मेरे दिल की तलाश तुम पर आकर खत्म होती है रूहे मन। जब दिल की बात दिल वाले तक पहुंचती है, उसकी आवाज की दिलकशी समाज से दिलकश समाज से दिल पर असर करती है। बेवजह दिल को करार आ जाता है, सारी थकन उतर जाती है। दिल की धड़कन जब एक आवाज बन जाए, तो शायर कहता है रूहे मन खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हां, दो लड़ाका दिल जो कभी अलग नहीं होते। सुनो, रात के इस पहर दिल की बातें कुछ रही हैं रात को। ये पहर दिल चाहता है कि ठहर जाए और बातें होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं। रुहेवन, रुहेवन। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, क्या बात है भाई। और जनाब, मिला जुला शो रहा। शायरी तो रुमानियत से भरपूर होती जो दुखों से दूर करती है, मगर जुदाई रुला देती है इस पहर में, जज्बों की कासी करती है। कौन किस कैफियत से गुजर रहा है, ये वाकई में
सही फरमाया आपने, और होता भी ऐसा है। आप लोगों के बताऊं कि अरे भाई शो इख्तिताम की जानिब है और अभी अभी जाग रहे हैं लोग। शनाया माही भी आ गई हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुने हो सर, कैसे हैं आप बाबूजी, आप और आपके बाबूजी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। एफएम 100 की पूरी फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है और कहती हैं कि तुम किन लोगों में दर्द सुनाने निकले हो, तुम कहोगे दर्द है, वो कहेंगे बहुत खूब। और गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से, हमारे अमीत गुल साहब आ गए हैं जनाब, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। और हमारे प्यारे से गुल साहब के कुछ इंतखाब, कहते हैं कि रात के कुछ पल मेरे अपने होते हैं, रात के कुछ पल मेरे अपने होते हैं, मैं होता हूं मेरे सपने होते हैं। क्या बात है। और इनकी एक नज्म आप लोगों की समातों की नजर करूंगा, और नज्म का उन्वान जो है वो है बेबसी। तन्हाई की एक जुड़वा बहन थी बेबसी, दोनों मेरे संग खड़ी थी, यादों की बोसीदा चादर से झांक रही, जिंदगी और ऐसे में सौतेलेपन का मारा मैं रो पड़ा। क्या बात है गुल साहब। और कहते हैं कोई भी काम बिना सेल्फी के है नामुमकिन, मैं आपसे हूं मुखातिब, जरा मुस्कुराइए। तुमसे मिलने का भी वादा करते हैं, तुमसे मिलने का भी वादा करते हम अगर इश्क दोबारा करते। नौरीन मेहना ने कहा है बहुत खूब नरीन भाई जी, बहुत खूब, कह रही है मैंने अपनी मोहब्बत का किस्सा बताया जी, हमने पढ़ा आपका किस्सा और बहुत खूब आपके, ये मैं इंतखाब ही कहूंगा कि बहुत खूबसूरत इंतखाब थे और क्या खूब थे। और जनाब शुक्रन कहा है रूहे मन ने, और शनाया का लास्ट मैसेज पढ़ेंगे उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। आप बहुत खूबसूरत अंदाज में शायरी पढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जीती रहो मुस्कुराती रहो। और इसके साथ ही हमारे नवीद साहब छोटे भाई जो हैं और शकील भाई ये भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि नवीद भाई का और शकील भाई का जो मैसेज है वो हमें हमेशा सलीम मेमन साहब भेजते हैं, और अगर ये सलीम मेमन साहब नहीं भेजा है तो आपके मैसेज कहाँ है जनाब। खैर लेकिन अब तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है। फैज सहमत फैज साहब की एक बहुत खूबसूरत सी गजल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, उसकी शायरी बहुत जबरदस्त, और शकीला खुरासानी की आवाज इससे पहले भी आपको अपने शो में सुना चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपनी जानिब से आप सबको डेडिकेट करता हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।

جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، وہ راز خلقت ہستی